FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड

0: 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

समूह स्वर में आपने सुनी देश वंदना। आइए सुनते हैं शब्द सोहन सिंह साथी की आवाजों में।

0: चित्रा सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है खरीफ फसल के समय में बुवाई। वाचक चित्रलेखा तिवारी है।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। आप मन सुना थवा अपन मन पसंद कार्यक्रम खेती के बाद। आज हमन बात करबो खरीफ फसल के समय में सही बखत में बुआई करे के महत्व के ऊपर। तो किसान भाई बहनी मन भर सही समय में बुआई करना बढ़िया उपज और बढ़िया आमदनी के पहली सीढ़ी होते। तो चलो शुरू करत हन आज के खास चर्चा। बरसात के मौसम आईस और यही समय किसान मन अपन खेत ला तैयार करके खरीफ फसल के बुआई में जुट जाते। वैसे तो बहुत जन किसान भाई मन हवा जीवन बरसात के पहली ही अपन खेत ला जो गर्मी के दिन में उलट पलट करना है, गहरा जोताई करना है, वो सब तैयारी करके रख दे रहते और वही में समझदारी भी है। तो संगी हुआ बरसात के मौसम में जो संगवारी मन खरीफ फसल के बुआई में जुट जाते लगते। बरसात में धान, मक्का, सोयाबीन, राहेर, उरीद, मूंग, तिल ये सब फसल के खेती बर सही समय होते और सही समय में बुआई करना बहुते जरूरी भी होते। तो संगवारी हो अक्सर देखे जाते कुछ किसान भाई मन पानी गिरते ही बुआई शुरू कर देते और कुछ किसान मन जरूरत ले ज्यादा देरी कर देते। कैसे? जैसे पहले ले बीज तैयार नहीं करे रही या हमार जिसे रेडियो नहीं सुनत रही। भाई रेडियो में बढ़िया बढ़िया जानकारी समय समय में हम देवत रहते ना। तो ये दोनों स्थिति में फसल का होते जरूर असर पड़ते। सही समय में बुआई करे के फायदा का है जाना था संगी हुआ? सही समय में बुआई करे ले बीज के अंकुरण बढ़िया होते, पौधा मजबूत बनते, जड़ ह गहरा तक जाते और फसल बरसात के पानी के पूरा फायदा उठाते। और समय में बुआई करे ले पौधा के बढ़वार समान होते और उत्पादन घलो बढ़ते। तब बुआई के पहली खेत के बढ़िया तैयारी करना जरूरी हवा है। खेत में जोताई करके माटी ला भुरभुरी बनावा। अगर खेत में खरपतवार ज्यादा है तब बुआई के पहली नींद गोड़ के नियंत्रण कर लेवा। संगवारी हो बढ़िया उत्पादन बर प्रमाणित उन्नत किस्म के बीज के उपयोग करना चाहिए। बीज के अंकुरण क्षमता बढ़िया होते, रोग कम लगते और उत्पादन भी ज्यादा मिलते। एक ठन जरूरी बात, बुआई के पहली बीज उपचार जरूर कराओ। बीज उपचार करे ले शुरुआती बीमारी और कीड़ा के खतरा कम हो जाते। अब बीज उपचार में वैज्ञानिक मन के सलाह के अनुसार या जैविक उपचार के प्रयोग कराओ। अब बात करत हन बुआई के तरीका की। तो कतार में बुआई करना सबसे बढ़िया तरीका माने जाते। कतार में बुआई करे ले निराई गुड़ाई खातू डारे और दवाई छिड़के में सुविधा होते। अब पौधा ला बराबर दूरी भी मिलते बढ़वार बर और बढ़िया रोशनी के संचार बने रहते। एकर से एक तो खरपत वाला नींदे में भी मतलब आसानी होते और कीड़ा मकोड़ा भी कम लगते। तो धान के खेती करने वाला किसान भाई मन बर सलाह है कि अपन इलाका के अनुसार समय में रोपा या सीधा बियासी कराओ। बहुत जल्दी या बहुत देर रोपाई करे ले भी उत्पादन घट जाते। और मक्का, सोयाबीन, राहेर और दूसर दलहनी तिलहनी फसल में बीज के सही गहराई, सही दूरी ये सब के ध्यान रखना जरूरी है।

0: हवय। ज्यादा गहरा या ऊपर ऊपर बुआई करे ले भी अंकुरण प्रभावित होते। तो संगवारी हो, बरसात के पानी के भरोसा में खेती होते, एखर सेती मौसम के जानकारी ऊपर घलो ध्यान देना जरूरी रथे भाई। जब पर्याप्त नमी हो तभे बुआई करना चाहिए। जरूरत ले ज्यादा पानी भरे खेत में बुआई करे ले भी बीज ह सर जाते। तो खातू के बात करबो तो माटी जांच के आधार के ऊपर खातू के उपयोग करा। सबले बढ़िया तरीका हवा जैविक खातू। एकर बार माटी की उर्वरता बने रथे और फसल घलो बढ़िया होते। बुआई के बाद खेती के नियमित निगरानी जरूरी हवाय। कहूँ कीड़ा बीमारी या खरपतवार के समस्या दिखा थे तो समय में नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि वो चीज में आप देरी करो तो आप फसल में नुकसान हो जाही। आजकल मौसम में बदलाव देखे जावा थे, है ना भाई? देखता ना, कभू कभू 8 दिने झक्कर तो कभू कभू 20 दिन तक निर्मामूल निट्रंग पानी बंद हो जाते। तो एकर से का होते, कीड़ा बीमारी या खरपतवार के समस्या दिखते। तो समय में नियंत्रण एकर बर जरूरी है। आजकल मौसम में बदलाव रथे तेकर से तीर किसान मन ला मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी चेत करना है, देखना है। तो संगवारी हुआ, याद रखा, सही समय में बुआई, बढ़िया बीज उपचार, संतुलित खातू, समय में खरपतवार नियंत्रण और खेत के नियमित देखरेख, ये सब मिलके भरपूर उत्पादन के आधार बनते भाई। तो आखिर में यही कहबो कि खरीफ फसल के सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कदम सही समय में बुआई करना है। जेन किसान समय के महत्व समझते ओमन कम लागत में बढ़िया उत्पादन प्राप्त करते। आज के कार्यक्रम में अटके, नवा विषय के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खरीफ फसल के समय में बुवाई विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:36 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका है शोभना राव, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नवविवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

अभी हम प्रस्तुत कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायिका थी शोभना राव। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। नव विहान में आज हम चर्चा कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। श्रोताओं, कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन जब किसी परिवार में अचानक कोई गंभीर बीमारी आ जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए या लंबे समय इलाज का खर्च सामने आ जाए, तब कई परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। कई बार लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है या इलाज ही बीच में छोड़ना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सिर्फ इलाज कराना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज का भरोसा देना है। आयुष्मान भारत के दो प्रमुख भाग हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जांच, दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। इसी योजना के तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा मिलती है। आइए जानते हैं इस योजना से लाभ कैसे ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। यानी परिवार का कोई सदस्य सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होता है तो निर्धारित उपचार का खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है। मरीज को अस्पताल में भर्ती होने से पहले, इलाज के दौरान और छुट्टी मिलने के बाद कुछ दिनों तक की आवश्यक सेवाओं का लाभ भी योजना के प्रावधानों के अनुसार मिल सकता है। इस योजना की एक बड़ी विशेषता ये है कि इसका लाभ देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर भी इलाज की आवश्यकता हो और वो अस्पताल इस योजना से जुड़ा हो, तो वहाँ भी योजना का लाभ मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं पात्रता की। इस योजना में मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित परिवारों के लिए बनाया गया है। पात्रता का निर्धारण मुख्य रूप से

सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना SECC 2011 के आधार पर किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान, भूमिहीन मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न वंचित श्रेणियों के परिवार पात्र हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और चिन्हित व्यवसायों से जुड़े परिवारों को पात्रता के दायरे में रखा गया है। हाल के वर्षों में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने इस योजना का विस्तार भी किया है, इसलिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी पात्रता की जांच स्वयं कर ले, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। नव विहान में अभी हम चर्चा कर रहे थे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। हमारा प्रसारण आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

प्रतिदिन की तरह सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। कार्यक्रम यादों के झरोखे से का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर। कलाकार होंगे डीमन सेन और साथी जवाहरलाल बघेल और साथी। सुबह 10:00 सुनिएगा फोन इन पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुतकर्ता होंगी संज्ञा टंडन। सुबह 11:00 समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम युवा जगत की ओर हम बढ़ेंगे। संध्या 5:35 पर आज की बात में चर्चा का विषय होगा वन महोत्सव और डॉक्टर बीसी रॉय का योगदान। क्रम रहेगा प्रकृति और पर्यावरण का। शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनेगा का।

ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे। शाम 7:20 पर बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा वर्षा जल संचयन। सफल कृषक से भेंट क्रम में ग्राम बिरगहनी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के श्री श्यामलाल साहू से ली गई भेंट वार्ता सुनिएगा। और साथ ही में मशरूम उत्पादक कृषक रोहित साहू ग्राम मुलमुला विकास खंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा से राजू भैया द्वारा की गई बातचीत सुनिएगा। रात्रि 8:00 सुगम संगीत में हम पेश करेंगे अनुराधा पौडवाल के गीतों को। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7

आज सुबह। सुबह की इस ताजगी भरी बेला में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, इन दिनों सुबह की हवा में कुछ अलग ही एहसास घुली हुई है। लगता है जैसे प्रकृति ने लंबी तपती हुई गर्मी के बाद राहत की एक गहरी सांस ली हो। मानसून ने दस्तक दे दी है और धरती ने जैसे मुस्कुराकर उसका स्वागत किया है। रात की हल्की हल्की बारिश के बाद जब सुबह की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी पानी की बूंदों से टकराती है, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने हर पत्ती पर छोटे छोटे मोती सजा दिए हों। मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को अपनी ओर खींच लेती है। ठंडी हवा का हर झोंका चेहरे को ही नहीं, मन को भी ताजगी से भर देता है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कुछ ही दिनों पहले जो पेड़ धूल से ढके और मुरझाए से लग रहे थे, आज वही हरियाली की नई चादर ओढ़कर इठला रहे हैं। खेतों में नई उम्मीदें अंकुरित होने लगी हैं। सूखी धरती अब जीवन से भर उठी है। छोटी छोटी नदियां फिर से बहने लगी हैं। सुबह पक्षियों का मधुर कलरव सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो भी बारिश की खुशी में अपना संगीत बिखेर रहे हो। कहीं गौरैया फुदक रही है, कहीं मैना चहक रही है, तो कहीं मोर अपने पंख फैलाकर मानो बादलों का स्वागत कर रहे हैं। प्रकृति के ये नज़ारे हमें यही याद दिलाते हैं कि जीवन इसी हरियाली, इस ताजगी और जीवंत वातावरण में बसती है। लेकिन श्रोताओं, ये विचार करने वाली बात है कि हरियाली अपने आप नहीं आती। इसके पीछे वर्षों से खड़े वो पेड़ हैं जिसने धूप सही है, आंधियां झेली है, और फिर भी हमें छाया, शुद्ध हवा और जीवन देते रहे हैं। अगर ये पेड़ पौधे, नदियां, पंछी नहीं होते तो शायद मानसून की ये खूबसूरती भी इतनी मनमोहक नहीं होती। प्रकृति की इस खूबसूरती और उसके महत्व को याद करते हुए हम हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाते हैं। ये सिर्फ पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि जितना हम प्रकृति से लेते हैं उतना ही उसे लौटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज हम सभी शुद्ध हवा चाहते हैं, समय पर बारिश हो, नदियां पानी से भरी रहें, खेत लहलहाते रहें, और आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह चिड़ियों की चहचहाहट और हरियाली का आनंद लेते रहें। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। श्रोताओं, विकास की दौड़ में हमने बहुत से पेड़ काट दिए हैं, जंगल सिमट गए हैं, नदियां सूखने लगी हैं, तापमान बढ़ गया है और मौसम का संतुलन भी बिगड़ गया है। आजकल या तो बहुत

ज़्यादा बारिश हो जाती है या लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। वन महोत्सव हमें सिर्फ पेड़ लगाने के लिए नहीं बल्कि पेड़ों के साथ रिश्ता जोड़ने की सीख देता है। अक्सर हम उत्साह में एक पौधा लगा तो देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं, उसे पानी के साथ साथ देखभाल भी चाहिए। हम अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ पर एक पौधा लगा सकते हैं, अपने किसी प्रियजन की स्मृति में भी एक पौधा लगाकर उसकी सेवा कर सकते हैं। जब वो एक विशाल पेड़ का आकार ले लेगा तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं रहेगा बल्कि आपकी यादों, आपके प्रेम और आपकी जिम्मेदारी का एक प्रतीक भी होगा।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
3: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। प्रस्तुत है यातायात से जुड़ी आज की खबरें, अर्थात ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर हो या गांव, यद्यपि कई स्थानों में सड़कों में छोटे बड़े गड्ढे हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, किंतु सुरक्षित यातायात के प्रति सजग वाहन चालकों के प्रयास से संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था सामान्य है। आप सभी से निवेदन है, हमेशा सड़कों में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति चैतन्य रहें, यातायात के नियमों के अनुयायी बने। मित्रों, इस ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर दैनिक कार्यक्रम के माध्यम से हम विगत लगभग 4 वर्षों से बिना किसी चूक के प्रतिदिन बिलासपुर जिले की तात्कालिक यातायात व्यवस्था से जन जन को अवगत करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रोचक एवं उपयोगी कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण भी बताए जा रहे हैं। सड़कों में हर संभावित खतरों से अवगत कराते हुए इनसे बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। बच्चे, जवान, वृद्ध सहित सभी सड़कों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह कार्यक्रम तमाम रेडियो सेट के माध्यम से 75 किलोमीटर की परिधि में नियमित रूप से आकाशवाणी बिलासपुर के द्वारा दिन में 2 बार प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम को हर वर्ग तक पहुंचाने में आकाशवाणी बिलासपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे लोग अपने घरों में, दुकानों में, पेट्रोल पंप में, खेत में, खलिहानों में इसके

0: साथी वाहन में यात्रा करते भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवारजनों की यात्रा सुखद और सुरक्षित बना रहे हैं। प्रतिदिन बिलासपुर सहित 8 जिले में सुने जाने वाले इस लोकप्रिय कार्यक्रम के संबंध में आकाशवाणी बिलासपुर के श्रोताओं के पत्र संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोतागण अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत करा रहे हैं। इस कार्यक्रम की उपयोगिता एवं लोकप्रियता को देखते हुए स्थानीय रेडियो तड़का एवं अरपा रेडियो के द्वारा भी नित्य इसका प्रसारण किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में इसे हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आम श्रोताओं से भी इस कार्यक्रम के प्रति अपने सुझाव का हम सम्मान करते हैं। अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करावें। दोस्तों, सड़कों में सुरक्षित यात्रा के लिए हमेशा धैर्य का परिचय देवें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय चिकित्सा जगत और राष्ट्र निर्माण के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। उनके लिए डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि मानवता की सेवा का संकल्प था। एक कुशल चिकित्सक होने के साथ ही वो दूरदर्शी प्रशासक, समाज सेवी और राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। अपनी चिकित्सा सेवा के साथ साथ उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन और सामाजिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी चिकित्सक रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद राजनीति से जुड़े और औद्योगिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा दी उन्होंने। देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने डॉक्टर बीसी रॉय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया और उनके सम्मान में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। श्रोताओं, ये संयोग भी बहुत अद्भुत है कि डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म आज ही के दिन 1882 में हुआ था और आज ही के दिन 1 जुलाई 1962 को उन्होंने अंतिम सांसें भी ली। तो आइए इस महान विभूति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: एक साधारण सी बांस की बांसुरी को अपनी साधना, प्रतिभा और अद्भुत संवेदनशीलता से ऐसा स्वर देना जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। जब उनकी उंगलियां बांसुरी के सुरों पर थिरकती हैं तो लगता है जैसे बहती हुई नदी गुनगुना रही हो, जैसे सावन की पहली फुहार धरती को छू रही हो, जैसे सुबह की ठंडी हवा अपने साथ प्रकृति का कोई मधु संदेश लेकर आई हो। ऐसे महान बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही मन में मधुर सुरों की एक अनूठी दुनिया जीवंत हो जाती है। आज वो अपने जीवन के 88 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वो आज भी अपने गुरुकुल में देश विदेश से आने वाले विद्यार्थियों को बांसुरी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देते हैं।

इस साल उन्होंने बांसुरी परंपरा 2026 में विशेष संवाद और प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने रागों और बांसुरी वादन की बारीकियों पर चर्चा की थी। आज उनके जन्मदिन पर बांसुरी जब गाने लगे नाम का एक विशेष सांगीतिक नाटक और संगीतमय कार्यक्रम नई दिल्ली में प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक भव्य बॉलीवुड म्यूजिकल स्टेज है श्रोताओं, जो उनके जीवन, संघर्ष और संगीत यात्रा को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में लाइव थिएटर, प्रतिष्ठित सिनेमाई दृश्यों और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चांदनी, लम्हे, डर जैसे फिल्मों के संगीत के जरिए उनकी कहानी बयां की जाएगी। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ हिंदी फिल्म संगीत को भी उन्होंने अपनी मधुर बांसुरी से अनमोल धुने दी। उनकी बांसुरी की एक एक तान गीत के भावों को और भी गहराई देती है। आज उनके जन्मदिन पर हम भी हृदय से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए सुनते हैं उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस फिल्मी गीत को, जिसकी मधुरता को उनके बांसुरी ने और भी अविस्मरणीय बना दिया।

श्रोताओं, अब हम चाहते हैं आपसे अनुमति, तो कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है यादों के झरोखे से कार्यक्रम। श्रोताओं, आसमान में काली घनी घटाएं उमड़ने घुमड़ने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने आंचल में सावन को सजा लिया हो। ठंडी हवाओं का स्पर्श, दूर कहीं गूंजती बादलों की गर्जना और रिमझिम बारिश की आहट। हिंदी सिनेमा ने भी इन काली घटाओं की अदाओं को सुरों में इस तरह पिरोया है कि दशकों बाद भी वो गीत सुनते ही बरसात की महक ताजा हो उठती है। तो आइए श्रोताओं, अब बातों से आगे बढ़ते हैं संगीत की उस दुनिया में जहां काली घटाओं की मस्ती भी है, रिमझिम फुहारों की ताजगी भी है और मानसून की मधुर अनुभूति भी है।

श्रोताओं, आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन मोहन की तर्ज थी और फिल्म का नाम था चिराग। आइए अब सुनते हैं सलील चौधरी की धुन पर शैलेंद्र के लिखे इस गीत को। गायकी लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है परख।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आइए सुनते हैं कैफी आजमी की रचना को खय्याम की तर्ज पर। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है आखिरी खत।

पेश है मयूर पंख फिल्म का गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026

20 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, लीजिए पेश है लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिनेत्री फिल्म का ये तराना। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं।

यादों के झरोखे से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और

0: के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलूरू में

0: मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थितियों और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आपने सुना डीमन सेन और साथियों की आवाज़ों में छत्तीसगढ़ी लोक गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। आइए श्रोताओं, सुनते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत जवाहरलाल बघेल और साथियों की आवाजों में।

अभी आप सुन रहे थे डीमन सेन और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत को। इसी के साथ कार्यक्रम अमराई यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।

0: दुनिया देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बी। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की कहानी।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से

0: गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत, अलका याग्निक अभिजीत की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिस

0: साल गा गए वो आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देश भर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपए की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के लिए शुरू की जा रही है। इस योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026

2021 के बजट में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कल 2 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़दा विकासखंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है।

0: में मिलेगा। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खान पान व्यवसायियों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। इन अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किश्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। इससे नए सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मारवाही, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति, लंबित प्रकरणों के निराकरण, प्रभार व्यवस्था, पुलिस सत्यापन और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है VBG रामजी योजना। 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में करीब 183 रुपए की कमी की गई। और मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुत करता है संज्ञा टंडन।
2: हेलो आपकी पसंद।
3: आवाज का जादू है जो दिलों को जोड़ देता है। रेडियो वो दोस्त है जो तन्हाई का रुख मोड़ देता है। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बिलासपुर के आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद में। मैं हूं आपकी दोस्त और रेडियो साथी संज्ञा। दोस्तों, आज का दिन कुछ खास है। आज हम बातें करेंगे उस आवाज की जो बरसों से आपके ड्राइंग रूम से लेकर खेत खलिहानों तक पहुंचती रही है। रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं, ये तो एहसास है। आज हमारे श्रोताओं से जो बातें हुई हैं उसके माध्यम से सफर तय करेंगे रेडियो से जुड़ी कुछ नई पुरानी बातों की। हमारी श्रोताओं से चर्चा हुई है रेडियो के कुछ सुने अनसुने पहलुओं पर, चाहे वो रेडियो के टैक्स जमा करने की पुरानी यादें हों या फिर आप श्रोताओं और हम प्रस्तुतकर्ताओं के बीच का वो अटूट और जादुई रिश्ता। तो अपने रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि आज की सुबह होने वाली है बहुत ही यादगार। बने रहिए मेरे साथ रेडियो बिलासपुर पर हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम के माध्यम से। हेलो आपकी पसंद।
4: हेलो आपकी पसंद मैम।
3: हाँ जी
4: जी, मैं बिलासपुर अकलतरा से आजाद चौक से चांदनी जी बोल रही हूँ।
3: हाँ तो चांदनी जी, हमारी तो आज आपसे पहली बार बात हो रही है।
4: जी मैं मतलब दूसरी बार बात हो रही है, एक बार पहले किया है।
3: अच्छा, क्या करती हैं चांदनी
4: जी? मैं घर का काम।
3: अच्छा, तो रेडियो सुनने का शौक पुराना था आपका
4: जी?
3: और फोन लगाने का

0: शौक अभी नया नया हुआ है?
1: जी लगाने का तो पहले भी था पर लगता ही नहीं था कॉल में।
0: अच्छा, तो अभी अचानक लगना शुरू हो गया?
1: जी जी जी, तो खुशी होती है, लग जाता है तो ऐसा लगता है कि आपसे बात हो जाए हमारे सखियों से। हाँ। और मैं सुनती हूँ सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, सखी सहेली असल में वो आकाशवाणी बिलासपुर का कार्यक्रम नहीं है, वो विविध भारती का है जिसको हम यहाँ से रिले करते हैं।
1: हाँ जी जी।
0: तो चांदनी जी कब से सुन रही है रेडियो?
1: जी मुझे हो गया करीबन 20-30 साल हो गया है।
0: 20-30 साल? हाँ। अरे भाई 20 और 30 में तो बहुत अंतर होता है, 10 साल का।
1: 30 साल समझ लीजिए, 30 साल से ही, मतलब मैं बचपन से जैसे 16-17 साल की थी तब से सुनती आ रही मैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: स्कूल भी जाते थे तो हम लोग बात, मतलब जब रेडियो चालू करती थी मैं और सुनती थी और मम्मी से चोटियां बनाती थी, मम्मी को कहती थी मम्मी रेडियो बंद कर देना। अच्छा। तो मैं चली जाती थी। फिर यहाँ पर मैं मतलब शादी करके यहाँ पर भी आई तो मेरे मिस्टर जो है वो भी रेडियो से ही रिलेटेड मुझे मिले हैं। वो भी पहले रेडियो मतलब उनका सामान वगैरह जो रहता है ना मैम उसको बेचते थे, रिपेयरिंग भी करते थे।
0: वाह, तो अब आप अपनी बेटियों की चोटियां बनाती हैं और तब रेडियो सुनती हैं?
1: जी। और मेरी बेटी को रेडियो पसंद नहीं है मैम।
0: हाँ, अब वो आज के जमाने वाले हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं
1: जी,
0: रेडियो के अलावा भी म्यूजिक सुनने के और मनोरंजन के बहुत साधन हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन
1: हमारे पास ये एक रेडियो ही बस मात्र था जो हम सुनते थे और हमें अच्छा लगता था।
0: चलिए, अच्छा लगता था, है और रहेगा।
1: रहेगा।
0: चांदनी अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनती रहिए रेडियो।
1: आप लोगों की आवाज बहुत प्यारी लगती है मैम। अच्छा। बहुत मीठी लगती है।
0: जी जी। तो आप आकाशवाणी बिलासपुर बस सुनती हैं या और रेडियोस भी सुनती हैं?
1: नहीं, मैं बिलासपुर ही सुनती हूँ, जो भी ये जो आकाशवाणी का जो उसमें आप जोड़ते हैं वहाँ पर
0: विविध भारती।
1: हाँ जी, वो सारा मतलब सारा दिन सुनती रहती हूँ।
0: अच्छा।
1: उसमें सदाबहार नगमे आते हैं, मन चाहे गीत होता है, सब सुनती।
0: और बिलासपुर के कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: अब बिलासपुर की आपकी पसंद,
0: हेलो आपकी पसंद
1: बोलती है ना जो वो मैडम, हेलो हेलो आपकी पसंद, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, वो एक सिग्नेचर ट्यून है जो वैसे 20-30 साल पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब बहुत सारे लोगों से वो आवाज मंगवाई गई थी, तो कुछ एक बच्चे की आवाज फाइनल करके उसको सिग्नेचर ट्यून में जोड़ा गया था। हाँ, वो आज तक वो आवाज चल रही है।
1: हाँ, बहुत प्यारी लगती है बच्ची की आवाज।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा चांदनी बात करके। अब आज गीत कौन सा आपकी पसंद पर सुनवा दें?
1: मैं सुनना चाहूंगी, अब यहाँ पर शादी करके आए हैं, हो सकता है आगे बच्चों का शादी आदि हो या कुछ हो, तो मैं नील कमल फिल्म का गाना सुनना चाहूंगी, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी।
0: अभी अभी कितनी बड़ी है बच्ची?
1: बच्ची बड़ी है, 25 साल की है।
0: अच्छा,
1: तीन बच्चे हैं।
0: हाँ, मैंने कहा अभी अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अभी से बाबुल की दुआएं क्यों
1: नहीं
0: दे रही हैं?
1: अगर बच्चे छोटे रहते तो मैं अपने लिए ऑफर करती गाना।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो, आपकी पसंद।
1: हाँ हेलो, आपकी पसंद।
0: हाँ जी,
1: मैं धमनी ले समय लाल धीवर बोलो थोड़ी।
0: समय लाल धीवर।
1: हाँ
0: समय लाल जी, आपका नाम किसने रखा? समय है? कितना अच्छा नाम है आपका।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: किसने रखा आपका नाम?
1: दाई दादा ने रखे जी।
0: दाई दादा रखे रहे, एकदम मस्त बने नाम हवे।
1: समय लाल धीवर।
0: तो आप समय का कितना ख्याल रखते हैं? हम लोग रेडियो वाले लोग हैं, हम लोग रेडियो टाइम की बात करते हैं, यानी कि बिल्कुल हर चीज को समय से, कि 8 बजे समाचार शुरू होना है, मतलब होना है बिल्कुल, 8:01 भी नहीं आगे बढ़ता है। तो आपका नाम समय है, आप कितने समय के पाबंद हो?
1: हम समय से बंधे हुए जी, समय से मैं पूरा काम करता
0: हूँ। कैसा कैसा काम?
1: समय को बहुत मानता हूँ, नाम के हिसाब से नाम, मैं समय को बहुत मानता हूँ।
0: अच्छा, बस हम आपसे यही सुनना चाहते थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: समय जी, ये बताइए आप।
1: हाँ
0: कि आप करते क्या हो?
1: खेती किसानी करता हूँ जी।
0: तो अब बारिश नहीं हो रही है पर?
1: अभी तो हमारे तरफ बारिश नहीं हुए, हम खेत एक बार जोताए नहीं है।
0: तो वही तो हम कह रहे हैं, समय पे तो अब आप धान बुआई कर नहीं पाए।
1: आज की रही, कल की रही, उकराश में लगे हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बस समय आ गया है धान बुआई करने का आप लोगों के।
1: आपके केंद्र से ना कार्यक्रम में ईमेल भेज रहा हूँ मैं। माटी केश्वर में पत्र डाल चुका हूँ, बहुत दिन से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: कार्यक्रम ना हमें बहुत ही अच्छा लगती है।
0: हाँ, कहाँ रहते हैं बताएं?
1: धमनी राजिम।
0: धमनी राजिम,
1: गरियाबंद।
0: हाँ, जिला गरियाबंद। चलिए, बहुत दूर से आप सुनते हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे दूसरे कोने से आप बिलासपुर रेडियो सुनते हैं लगातार।
1: हाँ, लगातार सुना सुन।
0: और कौन कौन से रेडियो सुनते हैं?
1: ऐसे तो आकाशवाणी के नाम बहुत कार्यक्रम में बहुत से बहुत दिन से मैं रेडियो में हमारा बहुत रुचि है जी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए समय जी, आपके रेडियो में रुचि है, तो आज कौन से गाना सुनने की रुचि हवे?
1: फिल्म जीवन मृत्यु के,
0: झिलमिल सितारों का
1: फिल्म दिन बरसता सावन होगा।
0: तो सावन तो अभी आने में थोड़ा सा समय है, लेकिन
1: आज कल लगे अभी अषाढ़।
0: हाँ, अभी आपका गाना सुनवा देते हैं हम, इससे ही सावन मना लेते हैं और उम्मीद करते जल्दी जल्दी पानी गिरेगा।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: भाटापारा दतरंगी से बोला था दीदी। हीरू राम साहू।
0: हीरू राम साहू।
1: हाँ दीदी।
0: दतरंगी भाटापारा से आप तो लंबे समय के श्रोता हो, तो कब से सुन रहे हो आप बिलासपुर रेडियो?
1: हम लोग दीदी कम से कम 1991 से चालू है आपके कार्यक्रम, तब से हम सुन रहे हैं दीदी।
0: तब से सुन रहे हैं।
1: हम निमित श्रोता दीदी, आप रेडियो के माध्यम से हमारे घड़ी दीदी।
0: रेडियो के माध्यम से आपकी घड़ी है।
1: हम कहा है, हम आँख से दिव्यांग है।
0: हाँ?
1: तो वही में हम लोग सुन सुन कर टाइम को हम जान लेते दीदी।
0: बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे श्रोताओं की शुरू से ही ऐसी आदत रहती है कि सुबह से रेडियो खोल दिया और उसके हिसाब से कि हाँ, रामचरितमानस चल रहा है तो इतना बजा है, तो चिंतन चल रहा है तो इतना बजा है, समाचार आ रहा है, तो सबके हाथ पैर उसी हिसाब से, काम के हिसाब से चलते हैं।
1: हाँ ना, क्या है, हम तो घड़ी नहीं देख पाते, तो उसी में हम लोग को मालूम होते दीदी, दे टाइम देर चलता है, दे टाइम देर चलता है। ऐसे हमको सबको जानकारी ना बहन जी। हाँ, तो ओकरे हम सुबह 6 बजे चालू करते हैं, तो हम लोग सुबह 10 बजे रात तक सुनते दीदी।
0: अच्छा, तो बाकी क्या खेती किसानी करते हैं?
1: अब खेती किसानी को तो मैं दीदी अपने भैया को दे देता हूँ, खेती खाद नहीं करता हूँ मैं, जाता है दूसर में, दूसर के कमाने के लिए माई जी है तेन।
0: अच्छा, तो आप क्या करते हो?
1: मैं कुछ नहीं करता दीदी, का पेंशन सरकार द्वारा मिलता है, चावल मिलता है, उसी को लाभ लेता हूँ दीदी, घर में रहता हूँ, आग नहीं दिखता है ना मेरा।
0: अच्छा अच्छा तो मतलब आप सिर्फ रेडियो सुनते हो?
1: बस वही मैं टाइम पास करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो पहले पेंशन मिलती है सरकार से, उससे पहले क्या करते थे?
1: अब उससे पहले मेरे को गाय बचपन से मिल रहा है बहन जी, कुछ काम नहीं करता है मेरे, गाय 2006 से मेरी शादी हो गया है, तब से कुछ काम नहीं कर रहा हूँ मैं, रामायण में घूमता हूँ भाई जीवन यापन चलाने के लिए।
0: अच्छा, वही तो पूछ रही हूँ मैं, जीवन यापन कैसे चलता है, कुछ नहीं करता हूँ ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए।
1: नहीं, रामायण घूम लेते दीदी, अलवा जलवा टूटी फूटी अपने मतियां सा गाना गाता हूँ, तो मैं 2-4 पैसे मिल जाता है, मेरा जीवन चल जाता है।
0: अच्छा, तो थोड़ा सा टूटा फूटा गाया हुआ हमको भी सुनाइए ना।
1: चौपाई दीदी।
0: हाँ।
1: क्या है वो चौपाई को थोड़ा काम, मैं दूसर बोलते दीदी, चौपाई को मैं नहीं बोलता हूँ, गाना सर गाता हूँ दीदी।
0: हाँ, तो थोड़ा सा सुना दीजिए ना।
1: रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई।

0: बस ना जाइए ऐसे कुछ चलते दीदी तो ना बोलता हूँ दीदी।
1: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भाई, तो अब आज यहाँ क्या सुनवा दें, हमने तो आपको सुन लिया।
0: अब दीदी क्या है वो फिल्म नगीना सुन रहे से, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
1: अरे बाप रे, आप एकदम ही दुश्मन दुश्मन वाला गाना क्यों सुनवा रहे हो। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर मैं तेरी दुश्मन ये गाना।
0: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो
1: हेलो, आपकी पसंद से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
0: संज्ञा मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं आपका नियमित श्रोता जसवंत साहू बोल रहा हूँ संबलपुर से।
1: तो जसवंत जी, पूरा आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल, संबलपुर। तो आपके
0: जी मैम,
1: मतलब हमारे को कोई सोते में भी बोल देगा ना, इतने सालों से हम आपका नाम चिट्ठियों में सुनते रहे, फोन पे सुनते रहे, ईमेल में आप भेजते रहते हो। तो संबलपुर से जसवंत साहू नाम बिल्कुल छपा हुआ है, नींद में भी कोई पूछेगा तो हम फौरन बता देंगे।
0: अरे बाप रे, मैं बहुत खुश हूँ मैम कि आप इतना मतलब प्यार आप लोगों से मिला। आकाशवाणी बिलासपुर में इतना अपना पन है कहा जाए कि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, मेरा फोन कॉल बहुत दिनों से लगा नहीं था, लगता भी नहीं, बहुत व्यस्त रहता है। और बहुत इच्छा थी कि मैं अपने प्यारे अनाउंसरों से बात करूं, जो काफी समय से मैं जुड़ा हुआ हूं, जब से मैं जुड़ा हूं तब से आप लोगों की आवाज सुन रहा हूं मैम।
1: कब से जुड़े हो?
0: जी मैं 2003 से लगभग आप सुनते हुए आ रहा हूं।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, अब तब से आप लोग भी आवाज में सुरु सुन रहा हूँ, अभी भी सुन रहा हूँ।
1: हमने आपसे कहा हाँ। संबलपुर आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाले संबलपुर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमको तो उड़ीसा वाला संबलपुर ही ज्यादा मालूम है।
0: नहीं मैम, एक्चुअल में जब भी मैं बिलासपुर जाया करता था तो वहाँ पर जब मैं किसी को बताता था कि मैं संबलपुर से हूँ तो लोग मुझे उड़ीसा का ही समझते थे। तो मैं बोलता था भाई ये छत्तीसगढ़ का संबलपुर है, और हमारा संबलपुर बेमेतरा जिले में, फिलहाल अभी अब तो बेमेतरा हुआ है, पहले दुर्ग जिले में था। और यहाँ का जो अपना संबलपुर है मैम, वो काफी समय से विख्यात है कि ये बाजार संबलपुर नाम से ही जाना जाता है।
1: अच्छा,
0: और यहाँ पर पहले क्या है, यहाँ से कम मान लीजिए आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी से जो सबसे बड़ा मार्केट यही लगता था साप्ताहिक बाजार।
1: अच्छा अच्छा,
0: पहले
1: और
0: यहाँ पर व्यापारी बलौदा बाजार, भाटापारा, पंडरिया वहाँ से आया करते थे यहाँ पर धंधा करने के लिए, मतलब दुकानदारी करने के लिए।
1: अच्छा,
0: और आस पास जितने भी ग्रामीण है ना, वो सुबह से बाजार लगता था ना, जो 7 बजे से लेके वो शाम को 7 बजे तक ही मतलब चहल पहल बरकरार रहता था।
1: लेकिन आपने जितनी पूरी बात बताई उसमें सब में था करके पास टेंस में बात बताई,
0: अब वो नहीं रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: पहले वो बात थी और फेमस था, लेकिन अब क्या है, गांव गांव में छोटा छोटा बाजार लगने लगा है, ट्री मार्केट वगैरह छोटा छोटा। तो यहाँ का जो बाजार संबलपुर जो अपना स्वाभाविक उनका एक पहचान था ना, वो अब कम हो गया मैम, अब बाजार छोटा हो गया है और नाम बस बाकी है, लेकिन छोटा सा शाम को ही लगता है हैटरी जैसा। अब वो उस टाइप का रौनकता नहीं रही, इसलिए मैं उनको था बोल रहा था।
1: अच्छा, वाकई बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ के अभी भी नहीं मालूम होगा, आज जो लोग सुन रहे होंगे उनमें से भी बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि उड़ीसा का संबलपुर अलग है और छत्तीसगढ़ में संबलपुर बाजार संबलपुर नाम से एक जगह और है बेमित्रा जिले में।
0: जी जी जी मैम, और यहाँ पर भी ज्यादा है, जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उन दिनों यहाँ पर बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे, मतलब कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी से आया करते थे पढ़ने के लिए। यहाँ का विद्यालय भी बहुत पुरानी है, और मैं एक बार बीच में गया था तो जो प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक शाला, तो उनका जब पुराना रिकॉर्ड देखा मैम तो वो संचालित लगभग 1937 से है।
1: अच्छा, इतना पुराना स्कूल है।
0: इतना पुराना है, सबका नाम वाम लिखा था यहाँ, पूर्वजों का नाम मैं देख कर बहुत हर्षित हुआ था कि इनका सबका नाम दर्ज है यहाँ पर ऐसे करके।
1: वाह, ये बात अच्छी बात है, इतना बड़ा रिकॉर्ड इतने स्कूल के द्वारा भी रखा जाना और उसको मेंटेन करना। अब तो शायद कंप्यूटरीकृत हो गया होगा, लेकिन रजिस्टर्स के समय बहुत मुश्किलों से ये सारी चीजें इतने लंबे समय की दर्ज रहती हैं। तो उस स्कूल के शिक्षक लोग भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है वो।
0: जी जी मैम। तो बात ये है कि स्कूल था भी नहीं, किसी घर में संचालित हुआ करता था, तब की बात है।
1: अच्छा,
0: एक कच्ची मकान हुआ ऐसा हुआ करता था, ऐसा करके बताते हैं हमारे मतलब पिताजी लोग, उन लोग बताते कि इसमें संचालित हुआ करता था, और जो सबसे पहले का जो हस्तलिखित है वो नीज जी पेन से लिखा हुआ है, और साफ साफ हिंदी में क्या बताऊं, इतना बेहतरीन मैं इसको फोटो खींच के रखा हूँ उनका।
1: वाह, वहाँ के जो जितने भी शिक्षक इतने दिनों में आए होंगे, गए होंगे ट्रांसफर से, चाहे जैसे भी, उन लोगों ने उस चीज को मेंटेन रखा, उन सबको तो बधाई देना बनता है हमारा।
0: भाई संभाल के रखना बहुत बड़ी

0: आते हैं सब
1: जी
0: चीज
1: हाँ
0: को।
1: बिल्कुल
0: जी जी अब उसी तरह आकाशवाणी बिलासपुर है जिनमें हम खत लिखा करते थे और वो खत आज भी मतलब उन पुराने खतों को आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है, बहुत मीठी यादें हैं मैम उसमें
1: बहुत सारी। नहीं वो पुराने खत नहीं, खत लिखने वाले श्रोता आज भी हैं और बहुत सारे श्रोताओं के पत्र हमारे पास आज भी पहुंचते हैं उसमें, और ईमेल वाली पाती में बहुत फर्क है।
0: बहुत फर्क है मैम इसमें, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग आज लिखते हैं सही बात है, लेकिन जैसे जैसे लेटर मेरे पास पहले से रखा हुआ है, उन दिनों क्या आकाशवाणी बिलासपुर हम लोग कंटिन्यू सुना करते थे ना, तो जैसे अनाउंसर हुआ आप लोग और श्रोता लोग हुए, तो श्रोता उन लोगों से भी हम लोग का पत्र व्यवहार रहता था। अब वो पत्र आज संग्रह करके मैं रखा हुआ मेरे पास, मतलब 2003 से लेके श्रोता मित्रों का, उसमें एक श्रोता मित्र हुआ करते थे आप आकाशवाणी बिलासपुर से, मोहन नेताम जी जो अब स्वर्गीय हो गए हैं 2007 में।
1: जी जी
0: तो उनका भी हस्तलिखित पत्र आज भी मेरे पास है, उनको मैं धरोहर के रूप में रखा हूँ अपने पास।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: चलिए,
0: और जितने भी श्रोता हूँ उन दिनों हुआ करते सबका लेटर मेरे पास रखा है मैम, तो वो भी सब चीज को देखने से एक बहुत अच्छा फील होता है।
1: चलिए हमको भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, अब एक अच्छा सा गाना बता दीजिए तो और अच्छा अच्छा फील होगा।
0: मौसम भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाकी काफी धूप थी लेकिन आज धूप नहीं है, आज बदली है
1: जी हाँ,
0: और मौसम सुहाना होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है।
1: तो मौसम
0: बात आपसे हो गई मतलब मौसम सुहाना हो ही रहेगा
1: तो आज कौन सा सुहाने मौसम वाला गीत सुना दिया जाए आपको?
0: मैम बारिश वाला गीत सुनाएगा बढ़िया सा, रुमझुम रुमझुम
1: 1942 लव स्टोरी का। चलिए
0: उसी को सुनाएगा।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं जसवंत जी की पसंद पर, जो बाजार संबलपुर में रहते हैं उनकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैडम, आज फोनिंग फरमाइश है ना आज मैडम?
0: हाँ हो रही है ना फोनिंग फरमाइश, रिकॉर्डिंग लग गया है आपका फोन।
1: हाँ उसके लिए लगाया हूँ। नेहरूवाद भाटापारा से तेज कुमार जायसवाल।
0: तेज कुमार जायसवाल,
1: हाँ नेहरूवाद भाटापारा से। आज कल्याण जी का बर्थडे ना, इसलिए मैं उसी के फिल्म में गाना सुनना चाहता हूँ, उसी के मतलब संगीतकार में, संगीत में।
0: अच्छा ठीक है, कल्याण जी का गाना तो आप हमको बताइएगा, पहले अपने बारे में तो बताइए।
1: क्या मैडम, मेरा छोटा सा दुकान है, मैं उसी में बैठे रहता हूँ, मैं किराने का दुकान है।
0: अच्छा,
1: इससे अपना जिंदगी चला रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: ऐसे तो मैं बहुत पुराना सोता था, बाकी बंद कर दिया था, अभी आज एक कैसे याद आ गया तो फिर लगा लिया आपको।
0: लेकिन बंद क्यों कर दिया था?
1: क्या मैडम, अब बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए, हम कितने जने का ख्याल करें करके।
0: अरे तो बच्चों का ख्याल क्यों करना है आपको, रेडियो का ख्याल करना है ना, बच्चे तो बड़े हो गए, अब अपना ख्याल खुद रख लेंगे।
1: आपको अभी भी आवाज आ रहा होगा, मैं रेडियो 2400 घंटा चलते रहते, मतलब सवेरे 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बिल्कुल चलता है रेडियो।
0: अच्छा,
1: मैं बिलासपुर सुनना ही पसंद करता हूँ।
0: अच्छा नहीं ना, आपने कहा बंद कर दिया तो हम तो डर गए भाई कि आपने रेडियो सुनना बंद कर दिया।
1: फरमाइश करना बंद क्यों मैडम?
0: फरमाइश करना बंद करें तो चलिए आज से फिर से शुरू हो गया, फिर से किया कीजिए, मेल से भी कीजिए, चिट्ठी से भी कीजिए और फोन से भी कीजिए।
1: मैडम मेरा मोबाइल जो है ना छोटा वाला है, जैसे स्क्रीन नहीं है इसलिए ज्यादा करके मैं ध्यान ही नहीं देता ना, मेन वजह वही है।
0: हाँ तो आप अपने रेडियो में पुराने लगाया करिए।
1: फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना हो, साथी रे तेरे बिना क्या जीना, सुनना चाहता हूँ।
0: तो कल्याण जी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे?
1: अब कल्याण जी के बारे में क्या बताएं मैडम, वो तो बहुत ही मतलब वो थे संगीत में एकदम, उनके एक से एक संगीत थे।
0: तो चलिए कल्याण जी, आनंद जी वाले कल्याण जी को याद करते हुए आज आप, क्योंकि आप संगीत से तो जुड़े ही हुए हैं इतने सालों से, क्योंकि रेडियो से जुड़े हुए हैं, और उनको आज याद करते हुए आप जो गीत बता रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, सुनते हैं।
1: जी मैडम जी,
0: वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
1: हाँ, संज्ञा जी को हमारा वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम।
1: मैं रामचंद्र माखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ, बनिया पारा धमतरी से।
0: तो माखीजा जी, आप पुराने वाले श्रोता हैं, आप धमतरी के और बिलासपुर रेडियो लगातार सुनते हैं।
1: जी जी जी, और आपका स्टेशन और फेसबुक वगैरह में वो भी देखते हैं
0: जी।
1: आजकल क्या सब नया टेक्नोलॉजी हो गया ना।
0: ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पुराने श्रोता थे, जो सिर्फ एक ट्यून करके रेडियो को सुनते थे, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल से रेडियो सुनना हो, चाहे वो नेट खोलना हो, और अब AI भी जल्दी ही सीख जाएंगे। सारे हमारे बुजुर्ग श्रोता साथी इतने ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से, उसका एक कारण तो आप लोग रेडियो मानते होंगे।
1: हाँ, रेडियो तो भाई ऐसा है कि हमारे नस नस में, रग रग में समाया हुआ है क्योंकि हमारा को जन्म घुट्टी ही रेडियो की पिलाई गई है
0: जी,
1: तो इसीलिए जानते हैं रेडियो क्या होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो गड़गड़ाहट रहती थी, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कान से लगा हुआ रहता था, सोते तक रेडियो रहता था, हाथ वाले ट्रांजिस्टर आते थे, यानी उसी में ही समाये रहते थे। और अब मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो स्पष्ट प्रोग्राम मिल जाता है, और जैसे बड़े बड़े रेडियो वाल वाले आते थे, पहले तार लगा रहता था, उसमें लाइसेंस रहता था, पोस्ट ऑफिस में टैक्स पढ़ाना पड़ता था, अपना एक डायरी रहती थी पासबुक टाइप का, हर साल में 3 बैंड वाले में पटाना पड़ता था, फिर वो बंद हो गया कुछ समय बाद।
0: तो आपने पटाया है टैक्स?
1: हाँ बिल्कुल, मैं पिताजी लोग पटाते थे, हम लोग छोटे थे तो सुनते थे, 3 वाल वाला आता था ना, जैसे बत्ती जलती थी, एक हरे टाइप का रेडियो में बत्ती रहता था, तो उसमें टिकट में छपा रहता था रेडियो, और जैसे पोस्ट ऑफिस में सील लगाते थे गोल वाली।
0: अच्छा।
1: हाँ, और वो फिर बच्चे थे तो देखते थे वो क्या है, किस टाइप के, बाकी गीत संगीत तो शुरू से सुनते ही थे हमारे चाची लोग, मम्मी लोग।
0: अच्छा, कुछ आपको याद है, जैसे आप बता रहे कि सन की बात होगी और उस समय कितना टैक्स एक साल में पटाते थे आप लोग, और सील लगती थी, कि किस सन की बात होगी और कितना पैसा देते थे टैक्स पटाने में, कुछ याद
1: वो तो मालूम नहीं, हम लोग यानी चौथी पांचवी

0: पड़ते थे समझ लो 70 के आसपास के आसपास की बात है।
1: अच्छा अच्छा।
0: उसमें एक टिकट रहता जैसे डाक टिकट रहता है ना, इसकी टिकट थोड़ी लंबी रहती थी, उसमें रेडियो छपा रहता था और मुहर लगाते थे डाक वाला।
1: अच्छा अच्छा।
0: जैसे पोस्ट कार्ड में सील गोल वाला लगाते हैं ना, वैसे सील लगा रहता था। कुछ समय चला फिर बंद हो गया फिर।
1: लेकिन आप चौथी पांचवी क्लास में थे, वो सील आज तक आपके दिमाग में छपी
0: हुई है? दिमाग में अब पासबुक टाइप का एक रहता था, थोड़ा जैसे राशन कार्ड टाइप की डायरी रहती थी उससे थोड़ा छोटी।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई रामचंद्र जी। कितने सारे हमारे रेडियो के श्रोता होंगे जो 1970 के बाद से सुन रहे हैं और उन्होंने कभी टैक्स नहीं पटाया, उनको शायद ये जानकारी भी कभी नहीं रही होगी।
0: हाँ हाँ। तो दो बैंड में नहीं रहता था, तीन बैंड वाले में, जैसे वाल वाला रहता ना बड़े बड़े, उसमें
1: शॉर्ट वेव मीडियम वेव, लेकिन उस समय FM तो था नहीं, तब तीसरा वेव कौन
0: सा? नहीं, तीन बैंड रहती थी ना, शॉर्ट वेव एक, शॉर्ट वेव दो, फिर मीडियम वेव, इसको मिला के तीन मानोगे आप।
1: अच्छा अच्छा, शॉर्ट वेव वन, शॉर्ट वेव टू और मीडियम।
0: फिर बाद में हुआ शॉर्ट वेव मीडियम वेव FM तीन कर दिया।
1: जी हाँ, वो पुराने जो रेडियोज हैं लोगों के पास संग्रहण के रूप में आज भी, उनमें उस तरह की टेक्नोलॉजी दिखाई देती है जिसमें SW1 SW2 लिखा रहता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी।
0: और मैं तो आपको बताऊँ, रेडियो के इतने दीवाने थे कि सेल वाला रेडियो, एक थर्मामीटर वाला रेडियो निकला था मस्त, उसको हाथ में रखोगे तो टेम्परेचर बताएगा।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: टेन सेल लगता था उसमें, बिल्टॉन का आता था विदेश का।
1: अच्छा अच्छा, उस रेडियो को हाथ में पकड़ने से इंसान का टेम्परेचर पता चलता था?
0: हाँ, जैसे बुखार वगैरह रहेगा ना, उसमें बताएगा आपका शरीर हीट गर्म है कि नहीं।
1: अच्छा जी, ये तो बात।
0: और टॉर्च वाले रहते थे, टॉर्च वाला रेडियो रहता था। और एक सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अभी भी है वो फैमिली, भोजवानी फैमिली है, किराना दुकानदार होलसेल, तो उनके यहाँ पियानो जितना बड़ा रहता है ना पियानो, सेम उसी डिजाइन में एक रेडियो था उनके यहाँ, बहुत बड़ा।
1: अच्छा।
0: तो घर में रखते थे, साल में एक बार दिवाली में लक्ष्मी पूजा होती है अपने दुकानदारों में उस समय, अभी तो जनवरी कर दिए हैं शासन के अनुसार।
1: अच्छा।
0: तो आके रखते थे यानी उसमें दिवाली के दिन, जैसे मेल मुलाकात करने नहीं आते हैं तो दिखे करके।
1: अच्छा अच्छा, तो वो क्या धमतरी के रहने वाले थे?
0: हाँ, धमतरी बाजू, गोल बाजार बाजू में हमारे।
1: अरे तो आप उनसे पूछिए कि उस रेडियो का उन्होंने क्या किया।
0: हाँ हाँ,
1: अगर वो आज भी रेडियो उनके यहाँ है तो जरूर उसकी फोटो हमको भेजिए। मतलब ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज आप बता रहे हैं, जिसके
0: दुर्लभ यानी हम बचपन से देखते आ रहे थे भाई, अब उसका अभी तो 10-20 साल हो गया है, उनका काम दूसरा है अभी।
1: हाँ ठीक है,
0: बड़े बुजुर्ग जब रहते थे तो उनका था।
1: जी जी, तो आप जरूर पता कीजिए उस रेडियो के बारे में। और फिलहाल हमको आज के इस कार्यक्रम के लिए गीत बताइए।
0: बरसात का मौसम आ गया है तो दस्तक दे दिया, तो बरसात जो है हमारे जीवन में जरूरी है, जीव उत्पत्ति का मौसम है, इसके लिए हमें पानी का संग्रह करना है और पेड़ उगाना है। आप बरसात जो है एक प्रकार का, कालिदास ने बादलों को प्रेम का प्रतीक माना है, और कई लोग बरसात के जो बूंदे गिरती हैं वो विरह के प्रतीक मानते हैं कि बरसात रो रही है। तो आप सुनाइएगा, चांदनी फिल्म का गीत है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है और मेरे साथ आज बरसात भी रो पड़ी है, इसको सुनाइएगा संजय बंद।
1: बिल्कुल, चलिए सुनवाते हैं।

0: हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम से मैं संज्ञा बोल रही हूँ।
1: नमस्ते मैडम, मैं हरमिंदर चावला।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ से।
0: हरमिंदर जी, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी जी जी जी,
0: बताइए हरमिंदर जी, कुछ नया क्या?
1: अभी तो 6 अगस्त को जो हमारे छत्तीसगढ़ में रेडियो श्रोताओं का सम्मेलन जो आयोजित है इस बार छत्तीसगढ़ की ओर से, उसी की तैयारी चल रही है। और सितंबर में भिलाई और दुर्ग की एक श्रोताओं की टीम भाटापारा पहुंच रही है, उन्हीं के स्वागत के लिए मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा था। तो जब तक ट्रेन ना आए तब तक एक श्रोता ही था कि ये रहती कि कुछ ना कुछ इंगेज रहे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने प्रयास किया और ये नंबर आज लग गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। हरमिंदर जी, वैसे भी आप श्रोताओं का संबंध आपस में रेडियो के कारण इतना अच्छा हो चुका है कि कभी भिलाई वाले भाटापारा आते हैं, कभी भाटापारा वाले जो है वो पंजाब चले जाते हैं, कभी आप सब मिलकर महाराष्ट्र में आपस में मिलते हैं। तो ये जो पूरा नेशनल नेटवर्क बन चुका है श्रोताओं का रेडियो के कारण, भले ही रेडियो स्टेशन अलग अलग हैं, लेकिन आप सारे श्रोताओं की यूनिटी देख के बहुत अच्छा लगता है।
1: ये हम लोगों का रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी ऐसा अनमोल रिश्ता है कि जिसको हम लोग कोई नाम नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल सही बात है। और वो श्रोताओं का रिश्ता हम प्रस्तुतकर्ताओं को भी दिखाई पड़ता है, अक्सर सुनाई पड़ता है। और ये सोशल मीडिया के आने के बाद से जानकारियां सबको सबकी कुछ ज्यादा होने लग गई है।
1: जी जी, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ गया है
0: जी।
1: और किस रेडियो चैनल में किन श्रोताओं के किस प्रोग्राम में नाम शामिल हुए, वो लिस्ट प्रोग्राम समाप्त होते ही व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाती है
0: जी। हाँ, बिल्कुल।
1: तो ये बहुत अपना अनूठा प्रेम है, इसको तो मतलब वास्तव में कोई नाम देना बहुत मुश्किल का काम है
0: जी। हाँ, जो प्रोग्राम लोग नहीं सुन पाते हैं वो भी उस रेडियो से रिकॉर्ड करके आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को सुना देते हैं। अच्छा हरमिंदर जी, एक बात बताइए कि आप लोगों का जो एक एज ग्रुप है या आपसे सीनियर एज ग्रुप है, वो लोग तो रेडियो से बचपन से जो जुड़े हैं आज तक जुड़े हुए हैं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा, इसके बारे में क्या कहते हैं?
1: जी जी, ये तो बहुत कमी हम लोग भी महसूस करते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले 5-10 सालों के बाद जो पीढ़ी रेडियो से काफी 5-6 दशक से जुड़ी हुई है, इनके बाद मतलब वो श्रोताओं का थोड़ी सी ये कमी हमें महसूस होने लगेगी, क्योंकि नए वर्ग के जो हमारे श्रोता हैं जरूर कुछ जुड़ रहे हैं, लेकिन वैसी संख्या में या इतनी रुचि से नहीं जुड़ते जिस रुचि से अभी हमसे और हमारे जो सीनियर जो है इतना लगाव रखते हैं रेडियो और रेडियो के कार्यक्रमों से।
0: जी हाँ, जो आप बोल रहे हैं कमी लगेगी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अभी हमको कुछ प्रयास करने चाहिए क्या?
1: नहीं, हम लोगों का ये जो सम्मेलन वगैरह आयोजित करना या लोगों को आकृष्ट करना के ये इस टाइप का भी हम लोगों का भाव है, तो हम लोग यही प्रदर्शित करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी उसको देखे और इस अनाम रिश्ते को और ये जो हम लोगों का जो जुनून है उससे वो भी प्रभावित हों और वो भी इस हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं।
0: चलिए, आप श्रोताओं का भी बहुत ही सहयोग है, रेडियो और प्रस्तुतकर्ता और श्रोता एक दूसरे के पूरक हैं कहा जाता है, लेकिन आप लोगों के प्रयास भी रेडियो को चलाए रखने

0: के लिए, आगे श्रोताओं को जोड़े रखने के लिए भी बहुत सारे बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। श्रोता समूह को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वरना अभी तो लोग सिर्फ ये जुमला कहते हैं कौन सुनता है रेडियो, जबकि इतनी बड़ी संख्या में सुनते हैं और बाद में फिर न जाने कौन सा जुमला इस्तेमाल होगा।
1: मैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, हेलो आपकी पसंद के माध्यम से, जो भी किसी भी वर्ग का रेडियो का सुनने वाला, मतलब हम श्रोता ही कहेंगे उसको, यदि उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों के जुनून, हम लोगों के प्यार और हम लोगों का स्नेह कैसा होता है ये देखने और समझने के लिए एक बार भिलाई जरूर पहुंचे, जहां बहुत बड़ा एक रेडियो श्रोताओं का महाकुंभ आयोजित है। तो हम लोगों के आपसी जो स्नेह और रेडियो श्रोताओं की क्या मना स्थिति और हम लोग क्या सोचते हैं और हम लोगों की कैसी भावनाएं हैं, और देखें कि ये रेडियो श्रोताओं का जुनून क्या होता है और आपसी प्रेम क्या होता है।
0: तो चलिए हरमिंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज कौन सा गीत आपकी पसंद पर सुनवा दें हम अपने बाकी सारे श्रोताओं को?
1: बस वही कुछ रिश्तों की बातें हैं इस गीत में, वही गीत है, लता जी की आवाज है, फिल्म है खामोशी, गुलजार साहब के बोल, हमने देखी इन आंखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो।
0: बहुत खूबसूरत गीत की पसंद, और इसको श्रोताओं और प्रस्तुतकर्ताओं के साथ जोड़ते हुए, जैसे रिश्तों की बातों की आपकी हमारी बात हुई है, हम सुनवाते हैं आकाशवाणी बिलासपुर से आपको ये गीत।

0: तो इंतजार करना, वो रेडियो ही है जिसने सिखाया है शिद्दत से प्यार करना। तो दोस्तों, वक्त आ गया है आज के इस खास सफर को यहीं विराम देने का। बिलासपुर आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आज हमने रेडियो के साथ आपके और हमारे उस रिश्ते को फिर से जिया जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। आपकी उपस्थिति ही इस रेडियो की असली धड़कन है। हम प्रस्तुतकर्ता सिर्फ एक माध्यम है, असली रेडियो तो आप श्रोताओं के प्रेम से चलता है। तो बस आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अब आपकी अपनी संज्ञा को अनुमति अपने तकनीकी सहयोगी के साथ। नमस्कार।
1: हेलो,

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थी संज्ञा टंडन। लीजिए अब पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
4: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। प्रस्तुत है यातायात से जुड़ी आज की खबरें, अर्थात ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर हो या गांव, यद्यपि कई स्थानों में सड़कों में छोटे बड़े गड्ढे हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, किंतु सुरक्षित यातायात के प्रति सजग वाहन चालकों के प्रयास से संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था सामान्य है। आप सभी से निवेदन है, हमेशा सड़कों में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति चैतन्य रहें, यातायात के नियमों के अनुयायी बने। मित्रों, इस ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर दैनिक कार्यक्रम के माध्यम से हम विगत लगभग 4 वर्षों से बिना किसी चूक के प्रतिदिन बिलासपुर जिले की तात्कालिक यातायात व्यवस्था से जन जन को अवगत करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस रोचक एवं उपयोगी कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन सड़क दुर्घटना के कारण और निवारण भी बताए जा रहे हैं। सड़कों में हर संभावित खतरों से अवगत कराते हुए इनसे बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। बच्चे, जवान, वृद्ध सहित सभी सड़कों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह कार्यक्रम तमाम रेडियो सेट के माध्यम से 75 किलोमीटर की परिधि में नियमित रूप से आकाशवाणी बिलासपुर के द्वारा दिन में 2 बार प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम को हर वर्ग तक पहुंचाने में आकाशवाणी बिलासपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे लोग अपने घरों में, दुकानों में, पेट्रोल पंप में, खेत में, खलिहानों में, इसके साथ ही वाहन में यात्रा करते भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवारजनों की यात्रा सुखद और सुरक्षित बना रहे हैं। प्रतिदिन बिलासपुर सहित 8 जिले में सुने जाने वाले इस लोकप्रिय कार्यक्रम के संबंध में आकाशवाणी बिलासपुर के श्रोताओं के पत्र संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोतागण अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत करा रहे हैं। इस कार्यक्रम की उपयोगिता एवं लोकप्रियता को देखते हुए स्थानीय रेडियो तड़का एवं अरपा रेडियो के द्वारा भी नित्य इसका प्रसारण किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में इसे हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आम श्रोताओं से भी इस कार्यक्रम के प्रति अपने सुझाव का हम सम्मान करते हैं। अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करावें। दोस्तों, सड़कों में सुरक्षित यात्रा के लिए हमेशा धैर्य का परिचय देवें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
3: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:02 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी?
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षी

0: ये बारिश के दिन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।

0: जी पहाड़ी।
1: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: मैंने भी देखा है।
1: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,

0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी

0: काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना। बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूं, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूं।
0: ए, कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने तीन मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।

0: मुखिया जी, मुखिया जी।
1: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है
0: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
1: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
0: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
1: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
0: जैसी आपकी मर्जी।
1: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उधास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित आज से देश भर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई दरें आज से लागू हो गई हैं। और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा।

फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि 16 जून को नौगई निवासी भरत उर्फ लाला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, जीपीएम

इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के बलरामपुर, बिलासपुर, जीपीएम, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सहित कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जगदलपुर जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, डब्ल्यूसीसीबी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो बाघों के खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के ठिकाने से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित आज से देशभर में लागू हो रही है वीबीजी रामजी योजना। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई नई बिजली की दरें आज से लागू हो गई हैं। और बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजे रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपट

0: के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

Oh,

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मंजूर सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का, फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: शोभिन अय्यर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: चंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला

मस्तानी ओ जानी जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा।

बता दूं मैं, पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़क

0: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहां भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुश फहमियों का जहाँ कुछ रहने भी दें। जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जलें, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियां होती गलत फहमियों की बातें हम कर

सुनाए जा रहे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया और आपने इस दौर को किस तरह किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं और बड़े मन मुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुश फहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल, तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी, इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे। तो देखते हैं, और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, तो देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तू जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी चोरी, चुपके चुपके, शबनम, रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हो जाती होंगी, कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलत फहमियाँ देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफ़र पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं। उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहां खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने, ऐसा मुझे याद पड़ता है, मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं

नमिता देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ, या तो मुझ में ठहर जाता है अजब बंदिश, अजब आजादी के दरमियान हूँ किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में है, और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुश फहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती है, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा। जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती है कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

ये गलत फहमी भी श्रोताओं अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं चीज़ें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं, मसलन जब आप समुंदर किनारे बैठते हैं।

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है, या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुश फहमियाँ और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुश फहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कस्तूरी सुख है हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में, कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखती है।

देखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है। सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलत फहमी पर मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्म पत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलतफहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेन वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी, श्रोताओं। और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं, इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है, ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और

गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी, तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने, मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं, कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया?

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और

एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

अच्छे अच्छे और फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

पालेकर और जरीना बहाव पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी येसुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवन दायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र

मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला हैं, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300

0: रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future.

0: We are ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है,
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान

0: ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज़, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: साखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल
1: हाँ। और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
2: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है, आपने कभी जीवन में

0: प्रतियोगिता जीती,
1: जी
0: आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड को अटेंड किया,
1: जी
0: या
1: या
0: आप किसी
1: फिर
0: से प्रतियोगिता रखते हैं,
1: हाँ जी हाँ,
0: प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कि कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
0: मैं करके
1: उसको पीछे
0: बताऊं।
1: खींचे, तो वो आप
0: हाँ,
1: बताइए कि मतलब कौन सी आप
0: मतलब
1: प्रतियोगिता के बारे में।
0: आपके कहने का मतलब ये आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे
1: जी
0: बढ़ जाते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना? और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों
1: जी
0: वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर
1: बिल्कुल,
0: देती
1: और
0: है।
1: पीछे भी खींचती है
0: हाँ, पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस
1: जी
0: दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने
1: बिल्कुल
0: देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता
1: बिल्कुल
0: रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े
1: जी,
0: कुछ ऐसे
1: आप अपना
0: किस्से।
1: नजरिया हमें बताइए, और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर। देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, इसे कि ये हमारे
0: फैमिली
1: फैमिली
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: है।
1: हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं, उनकी राय मांगते हैं, फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके
0: जी
1: बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए, आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है?
1: बिल्कुल
0: कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी, उन्होंने मुसीबत को हल किया,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल, आप
0: तो
1: बताइए
0: इन
1: क्या
0: सभी
1: हुआ।
0: पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले। और
1: देखो
0: अरे
1: ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करा करिए ऐसा,
0: व्यंजन लेके आई
1: जी
0: आज तो आप।
1: बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता हैं वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में, सोचिए कितना, कहाँ बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो बस, मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की भी
0: गर्मा गर्म
1: सुगंध घुली
0: पकोड़े
1: मिली
0: मिल
1: होती
0: जाए,
1: है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो बताइएगा, आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह
1: जी
0: से पकोड़े बनाते हैं? कई तरह के
1: कौन
0: पकोड़े,
1: कौन से पकौड़े
0: हाँ, कौन
1: बनाते
0: कौन से,
1: हैं,
0: बेसन के और बहुत
1: ताकि हम
0: सारे
1: उसको
0: के
1: एकदम उसको सोच
0: खा
1: के
0: लें।
1: कल्पना करके उसको हम खा लें।
0: नहीं भी, हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है?
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो
1: जी
0: रहा है,
1: बिल्कुल, तो
0: ठीक है?
1: एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए,
1: जी
0: है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर।
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ,
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते या ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें हैं, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखा के दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार। तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी करते थे, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
1: ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और

0: आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो
1: जी
0: ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है
1: जी
0: कि भाई
1: हाँ
0: आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये
1: जी
0: अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है,
1: जी
0: इस तरह की
1: और
0: चीजें
1: जी
0: नहीं खानी है।
1: बिल्कुल। और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना,
1: जी
0: हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे
1: जी
0: बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ
0: आपने
1: अक्सर
0: अगर
1: होता है।
0: खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे बीपी की समस्या है तो वो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं
1: जी
0: तो नमक ऊपर से और लेती हूँ।
1: जी
0: तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो
1: बिल्कुल
0: कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर जब
1: बिल्कुल
0: आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी
1: जी
0: छोटी चीजों का जो स्वाद जीव को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल
1: बिल्कुल
0: रखना
1: कंट्रोल
0: चाहिए।
1: करना
0: जैसे अब
1: चाहिए।
0: आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना
1: जी
0: हमारे श्रोता तो मैं थोड़ा
1: जी
0: कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं
0: बिल्कुल,
1: अच्छा होता, वो
0: आपको सीधा
1: नुकसान
0: साधा
1: करता है।
0: खाना मौसम के
1: बिल्कुल
0: अनुरूप खाना चाहिए। और
1: बिल्कुल
0: सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ
1: बिल्कुल,
0: भोजन
1: क्योंकि
0: खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वो ही सादा
0: और
1: भोजन ही
0: फल
1: करें।
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश
1: जी
0: करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा
1: जी
0: हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह
1: बिल्कुल।
0: सकता
1: थोड़ा
0: है।
1: सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते
0: हाँ,
1: हैं, ऐसा
0: बहुत
1: करके
0: तरीके हैं
1: हाँ
0: खाने
1: बिल्कुल
0: के।
1: बहुत अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं
1: बिल्कुल
0: चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहां के परिवार के सदस्य बीमार रहे या
1: जी
0: उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ
1: बिल्कुल।
0: रहें।
1: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं, तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है।
1: जी
0: और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकाल

0: संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है, सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो
0: बिल्कुल
1: हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है हमारे जीवन में, उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम
0: बिल्कुल
1: करता है।
0: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में
1: जी,
0: महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर, यानी कि तुसार भी कहते हैं, जिसे घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है, जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है, वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो
0: और
1: रेशम की जो होती है ना, उससे
0: हाँ,
1: थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो
0: हाँ
1: रेशम
0: हाँ
1: होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती। कई बार
1: जी
0: हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है, हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी
1: जी
0: शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई
1: जी
0: कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो
1: हाँ
0: टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर
1: बहुत
0: साड़ी है। तो
1: सुंदर,
0: बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न
1: अलग
0: होती है।
1: जी
0: और तुसार रेशम, जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है।
1: जी
0: और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
1: जी और जो जो टसर रेशम होता है, उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी
0: हाँ
1: में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो
1: जी
0: उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा,
1: जी
0: जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है, रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है।
1: जी
0: रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है, उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है
0: अच्छा
1: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है, जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है, वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें, वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है, और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको,
1: जी
0: और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
1: जो साड़ी
0: हाँ
1: इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
0: समझता है
1: इसको।
0: कि कैसे इसको रखना है और ध्यान रखना है कि परफ्यूम

0: सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है हाँ, स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हाथ से और मेहनत से बनती
0: बनाई
1: है।
0: जाती है, और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है, और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती हैं साड़ियाँ।
0: हाँ,
1: एक गीत सुन लेते हैं ना।
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं। जी बिल्कुल
0: चलिए सुनते हैं ये
1: जी।
0: गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने।
1: जी, अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या
0: हाँ
1: लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तव

0: सिविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं, अपने
0: जीवन को
1: खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: निकल जाएं। ये
0: तो
1: जो हमारे
0: बिल्कुल
1: अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं।
0: जी
1: और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार
0: बिल्कुल
1: हारने में भी बहुत मजा होता है,
0: बिल्कुल।
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं कई
0: किसी
1: बार।
0: आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके तो
1: हाँ,
0: सबसे बड़ी बात ये होती है, उसके
1: प्रतियोगिता में
0: चेहरे की
1: हिस्सा
0: हंसी
1: ले,
0: देख के ही
1: हाँ
0: आपको लगेगा कि
1: मजा
0: नहीं
1: आता है।
0: हमने
1: अब बच्चों
0: अच्छा
1: से
0: किया।

0: प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है,
1: बिल्कुल
0: तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है।
1: जी
0: और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और
1: जी
0: हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से
1: बिल्कुल,
0: हिस्सा लेना है, वो कोई भी
1: बस अपने आप
0: प्रतियोगिता
1: को
0: हो।
1: मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए, हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उसको
0: बिल्कुल।
1: मजबूत रखिए
0: और
1: बस
0: मन के हारे हारे मन के जीते जीत,
1: जी
0: अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर
1: जी
0: भी आप जीत जाते हैं। बहुत
1: बिल्कुल
0: बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन
1: बिल्कुल,
0: होता है वो हमें,
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो
0: हाँ
1: मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है
0: बिल्कुल। इसलिए
1: जी।
0: प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे
1: आगे
0: लेकर
1: जी
0: जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदा नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और
0: वो
1: आगे
0: है,
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा, वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन,
1: व्यंजन।
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या
1: क्या
0: लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे

0: श्रोता लेकर आए हैं
1: बना कर लेकर आए
0: पकौड़े।
1: हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: कर रही है,
1: शानदार,
0: सच में
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब
1: शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: इन्होंने
0: बहुत बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से,
0: सच में
1: है ना,
0: सच
1: अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता
0: में,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाए, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात
0: वाह।
1: बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में
0: हाँ
1: साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि आप
1: हाँ,
0: जैसे
1: मैंने देख
0: पकौड़े वो
1: लिया
0: छन
1: था,
0: के निकल
1: तुम
0: ही रहे।
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: एक
1: सही कहा
0: जी
1: इन्होंने।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: बाप रे क्या बात है। देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना,
0: मैंने कहा ना बारिश
1: और
0: होते ही।
1: कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है, जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिए का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ, इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो, और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में

0: में आती है ना आरती,
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छी
0: स्वादिष्ट
1: आती है
0: लगती है।
1: जी।
0: और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए 1 चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर
1: जी
0: कॉर्न स्टार्च भी ले
1: हाँ
0: सकते
1: हाँ
0: हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें। एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं। इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आँच गर्म रखें। तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छम आछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है। इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी
0: चलिए।
1: दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए हैं, गीतों का आनंद भी तो
1: गीत भी
0: ले
1: सुन
0: लें।
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा
1: बिल्कुल
0: जो है बरसे, और
1: जी
0: उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें
1: हो गया
0: समाप्त करना होगा।
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: राधे श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत,
0: इजाजत,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहां तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
2: जी
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र

0: पत्रिकाओं में
1: जी
0: आपकी कहानियां छपी हैं, उसके
1: जी
0: बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस,
0: जी
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम दिए ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं,
1: जी
0: और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी
1: जी
0: और इन पत्रिकाओं को वो पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी,
1: जी
0: लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां
1: जी
0: इन
1: जी जी
0: पत्रिकाओं में स्थान पाती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश।
1: जी ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।
0: जी
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई,
0: जी
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है।
0: जी, तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई।
0: जी
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया।
0: जी यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी
0: मिला।
1: जी
0: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
0: क्या
1: बड़ा
0: बात,
1: सकारात्मक गीत है,
0: क्या
1: मुझे
0: बात,
1: बहुत अच्छा लगता
0: बहुत
1: है।
0: सुंदर क्लासिक गीत है ये।
1: जी
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर,
1: जी
0: और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी मैंने व्यंग्य लेखन सन 1998 से शुरू कर दिया था, और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है, जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षण में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर

0: रही हैं, तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे।
1: जी
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने हैं उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी जी
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया। हम आ गए मोबाइल युग में, जिसमें लोगों पास समय नहीं है,
1: बिल्कुल
0: छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं,
1: जी
0: कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कॉलम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सन्निधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है,
1: जी
0: जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा।
1: जी
0: बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सन्निधि। अभी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है।
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है, उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसा युग से अब
0: जी
1: तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते
1: बिल्कुल
0: हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है।
1: जी
0: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर
1: जी
0: ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है,
1: जी
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे,
1: जी
0: पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे।
1: जी
0: अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: जी और
0: हैं।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था,
0: जी
1: पाठक का
0: हाँ, बहुत बड़ा
1: जो
0: वर्ग
1: पढ़ा
0: था।
1: करता
0: हाँ
1: था।
0: बहुत, हाँ बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दिनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
0: जी
1: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
0: जी
1: अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
0: जी
1: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं
0: जी
1: और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी
1: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ
1: जी।
0: और मुझे एक गीत बहुत

0: पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता
1: जी
0: है।
1: जी
0: राडी
1: जी
0: साहब,
1: जी
0: व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो
0: जी
1: कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है,
0: जी
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की ट्रेनिंग, राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी
1: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल
1: जी
0: सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे
1: जी
0: व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी
1: जो 4,000 5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250 300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं
1: नहीं
0: हो
1: पाया।
0: पाया। जी
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है। नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं। थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और
1: जी
0: आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो
1: जी
0: हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
1: जी

0: तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है।
1: जी
0: तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप
1: जी
0: व्यंग्य लेखक हैं, क्या
1: जी
0: व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
1: जी ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता
0: व्यंग
1: है।
0: है।
1: इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
0: जी
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता
1: बहुत
0: है कि
1: आवश्यक
0: हमने
1: होता
0: क्या
1: है
0: चुना है।
1: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है, किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं, उसमें सुधार नहीं होना है,
0: मतलब
1: तो
0: वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक
1: हाँ,
0: बातचीत
1: उसको
0: होनी
1: आप
0: चाहिए।
1: प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए
0: जी
1: निर्देश।
0: जी हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर
1: जी
0: और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है,
1: जी
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
0: जी
1: जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे
0: क्या
1: बिना।
0: बात है,
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
0: आइए सुनते हैं।

0: आदिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है, तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया।

0: लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेंढक होना,
1: जी
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है,
1: बिल्कुल।
0: कुएं का मेंढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था, दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास,
1: जी
0: होमर जैसे कवि। इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे,
1: जी
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया। और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो
1: नहीं
0: सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आईं और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो
1: जी,
0: मुझे लगता है कि विचारों का पलवन
1: यायावरी
0: यायावरी से
1: से ही
0: होता
1: संभव।
0: है।
1: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते
0: जी
1: हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह
0: जी
1: ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो
0: जी
1: लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर
0: जी
1: में जो
0: जी
1: लोग निकाल देते हैं,
0: निश्चित रूप
1: है
0: से,
1: ना?
0: निश्चित रूप
1: तो
0: से।
1: जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना
0: जी
1: बहुत ज्यादा मदद करता है।
0: जी
1: तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले
0: जी
1: हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन
0: जी
1: लेते हैं।
0: जी जी

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है, इसमें एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा, यात्राएं करता रहा, कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें, तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगी दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन

0: में मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विष में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफएन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है।

ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, अस्कला, दोरना, जरहाडी

0: कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली, रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये पड़ौली, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, घड़गांव, बरडांड, दांती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये अम्बाचुआ, जामटोली, टुकुपानी, बोडालता, कूड़े केला, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 109 है। ये कूड़े केला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदु चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत है फिल्म दिल तो पागल है से। उदित नारायण, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

दिल तो पागल है फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं समीर का लिखा हुआ गीत। संगीत नदीम श्रवण का है, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की है। फिल्म का नाम है राजा।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जतिन ललित के संगीत से सजा हुआ आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। आवाजें अलका याग्निक और सोनू निगम की है। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में दिल फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला और अंतिम गीत है कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है फूल और कांटे। समीर का लिखा गीत है, संगीत नदीम श्रवण का।

कुमार सानू के गाए फूल और कांटे फिल्म के इसी गीत के साथ ये चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा जगत।

श्वेत जलद ने सलिल धरण कर अचल गगन में भ्रमण रचा है। अनल वर्ण से घिरे क्षितिज में वनस्पति का वसन सजा है। गरज गरज झनकार छिड़ रही दमक दामिनी की थिरकन से खिल अनुर्वर तप्त भूमि अब हरिहर कुंज की कुसुम धरा है। इस मंजुल शीतल उपवन में आसित जन श्रोता ये हमारे अभिनंदन कर आप सभी का हृदय स्नेह से भरा भरा है। और इसी तरह प्रेम से भरपूर इस दिल इस हृदय के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत में। मैं हूँ आपका साथी आपका दोस्त सृजन दत्ता। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा।

नमस्कार साथियों, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। माफ कीजिएगा साथियों, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। आज यही बदलते मौसम का असर है। इतने दिनों तक भयंकर तपती गर्मी रही, फिर अचानक कुछ दिनों से झमाझम बारिश। वैसे आग उगलते सूरज की तपन से सुलगते हुए बदन को बरसती अमृतनुमा जल की शीतलता की जरूरत तो थी, मगर बार बार बदलते तापमान से उलझते और भीगे कपड़ों में दिन भर जूझते मेरे इस कमजोर से शरीर की सुस्ती में सिमट गई और मैं बीमार पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत ही अच्छी दवा लिख दी है जिससे मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। उनके दवाई की बदौलत ही तो अभी आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, वरना अभी तक तो बिस्तर में ही पड़ा रहता मैं। इसके लिए साथियों, मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, बल्कि आज विशेष रूप से विश्व के सभी डॉक्टरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक सभी डॉक्टरों का धन्यवाद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों आज है डॉक्टर्स डे। आज का दिन विशेष रूप से सभी डॉक्टरों और चिकित्सकों को समर्पित है, और क्यों ना हो, उनकी बदौलत ही तो हमारा यह समाज स्वस्थ बना हुआ है। डॉक्टरों को हम भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमें जन्म देते हैं मगर डॉक्टर हमें जीवन दान देते हैं। ऐसे ही एक समर्पित सेवा भाव रखने वाले डॉक्टर जिन्होंने भारतीय समाज के नए रूप को गढ़ा, डॉक्टर बीसी रॉय यानी कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती पर आज ही के दिन 1 जुलाई को हर वर्ष डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था। उन्होंने पहले गणित में बीएससी किया, फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन के सेंट बार्थोलोम्यूज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 30 बार अप्लाई किया, लेकिन वहां के डीन उन्हें एडमिशन नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे भारतीय मूल के थे। लेकिन फिर अंततः उन्हें दाखिला मिल ही गया, और वहां जहां यह कोर्स 3 साल का होता है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने इसे 2 साल 3 महीनों में ही पूरा कर दिखाया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर बीसी रॉय ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया। वहां उन्हें 2 प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों, चरक यानी कि फिजिशियन और सुश्रुत यानी कि सर्जन का मिला जुला रूप कहते थे। डॉक्टर साहब अपने जीवन काल में किसी भी पद पर रहे हों, पर मरीजों को देखना और उनका मुफ्त में इलाज करना कभी नहीं छोड़ा। लखनऊ में रहते हुए भी उन्होंने वही किया, इसीलिए लखनऊ के अखबार उनके नाम के साथ साथ उनकी डिग्रियां MRCP और FRCS दोनों जरूर लिखते हैं, यानी वे दवाई भी देते हैं और सर्जरी भी करते हैं। हमारे देश में इन दोनों डिग्री को आसान भाषा में MD और MS कहा जाता है। इंग्लैंड से MRCP और FRCS पूरा करने के बाद वे सन 1911 में भारत लौटकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहां पढ़ाते हुए वे कॉलेज के स्टाफ की मदद के लिए नर्स का भी काम किया करते थे, क्योंकि वहां स्टाफ तो कम थे ही और नर्स की भी जरूरत थी। डॉक्टर बीसी रॉय ने कई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, जैसे जाधवपुर का DB अस्पताल, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट, चितरंजन कैंसर अस्पताल और कई नामी संस्थान। सन 1933 में पुणे में आत्मशुद्धि उपवास के दौरान जब महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, तब बीसी रॉय कलकत्ता के मेयर हुआ करते थे। गांधी जी के स्वास्थ्य की खबर सुनते ही वे दौड़े दौड़े उनके पास चले आए। गांधी जी ने उनसे दवाई लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी दवाई क्यों लूं? क्या तुमने इस देश के 40 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज किया है? तब बीसी रॉय बोले, नहीं बापू, मैं सभी मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकता, लेकिन जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज जरूर करता हूँ। मैं यहाँ महात्मा गांधी का नहीं बल्कि उनका इलाज करने आया हूँ जिनसे देश के 40 करोड़ लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं। यह सुनकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डॉक्टर जी से इलाज कराने को राजी हो गए। ऐसा व्यक्तित्व था डॉक्टर बीसी रॉय जी का। उनके सेवा भाव, विनम्र स्वभाव और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण वे काफी लोकप्रिय बन गए, और इसी लोकप्रियता ने उन्हें सन 1950 में पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री पद पर भी रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज को गढ़ने में
और चिकित्सा के विकास

में बहुत से अद्भुत कार्य किए। फिर 1 जुलाई 1962 को उनके जन्मदिन के दिन ही वे इस भारत भूमि को, इस धरती को छोड़कर चले गए, और उनके जीवन भर के योगदान के लिए उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर हम आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाकर उन्हें स्मरण करते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को हम सब की ओर से नमन। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं और सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म कॉकटेल से। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, और इसमें स्वर है नीरज श्रीधर और कविता सेठ के।

चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं और हमारे आज के क्रम प्रकृति और पर्यावरण की ओर, जहां हमने कोनी में अरपा नदी किनारे स्थित हरिहर ऑक्सीजोन के संस्थापक भुवन वर्मा जी से बातचीत की।

इस हरित सुधा में सुमन धरा की खिलखिलाती हुई आभा में चमकती है हमारी ये प्यारी सी वसुंधरा, हमारी ये धरती माँ। ये धरती माँ भी हमारी अपनी माँ की तरह ही होती है। जिस तरह से हमारी माँ हमें जन्म देती है, पालती पोसती है, हमारा ख्याल रखती है, उसी प्रकार ये धरती माँ भी हमें जीवन दान देती है। ये भी हमें पालती है, हमें शुद्ध हवा देती है, हमें फल फूल देती है, खेत खलिहान में अन्न देती है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जिस प्रकार अपनी खुद की माँ से प्रेम करते हैं, जिस तरह हम भी उनका ख्याल रखते हैं, हम हमारी इस सुंदर सी वसुंधरा, इस धरती माँ का भी ख्याल रखें, उनसे भी उतना प्यार करें। और उनसे प्यार करने के लिए उनके पास जाना, उनके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। आज के इस आधुनिक युग में हम सीमेंट के डिब्बे नुमा घरों के अंदर बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, और इस बीच हम कहीं ना कहीं हमारे इस प्राकृतिक भूमि को भूल गए हैं। हमने इस प्रकृति को अकेला छोड़ दिया है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके पास जाएं, उनके साथ भी समय बिताएं। इसके लिए हम सभी युवाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा दायित्व है कि हम इस प्रकृति के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाएं और इस प्रकृति में जाकर उसका भी ख्याल रखें। और इसके लिए हमारे शहर में बहुत सारे लोग अपने अपनी ओर से, अपने अपने स्तर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के एक प्रयास में मैं आज सम्मिलित हुआ हूँ, और साथियों आप सभी को भी इस प्रयास में मैं सम्मिलित करना चाहूँगा। आइए चलिए साथियों, चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है।

0: तो साथियों, हम यहाँ आज आ चुके हैं कोनी के पास, हमारी अर्पा नदी के, हमारी अर्पा माता के किनारे। यहाँ हम आए हुए हैं हरिहर ऑक्सीजोन में। तो इस हरिहर ऑक्सीजोन में क्या हो रहा है, यहाँ लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, चलिए इस बारे में जानते हैं। और यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं इस हरिहर ऑक्सीजोन के संयोजक श्री भुवन वर्मा जी। तो भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: बातचीत शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैंने ये कहा कि हम ऑक्सीजोन में आए हुए हैं ना, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजोन होता क्या है।
1: ऑक्सीजन की समस्या पर हम ज़्यादा गहराई दें तो गौर करना, कोरोना काल में हर बात, हर पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की बात चलती थी। उसी को ध्यान में रखकर ऑक्सीजोन विकसित किए हैं, और निश्चित यहाँ जितने पौधे लगे हैं पूरे ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। अतः इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम हरियर ऑक्सीजोन रखा गया है। यहाँ पूरे फलदार देव पौधे और छायादार पौधों में मैक्सिमम पौधे ऑक्सीजन देते हैं। नीम की पूरी कतार दिख रही है आपको।
0: अच्छा, हम सभी पौधों में एक एक करके जाएंगे। तो साथियों, ऑक्सीजोन का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन जहाँ हम ऑक्सीजन को संरक्षित करके रखें। यहाँ हम ऑक्सीजन का ही एक प्रकार से उपज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर भर में, देश भर में विकास के साथ साथ पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन प्रभावित क्षेत्र हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए, ये ऑक्सीजोन जो हरिहर ऑक्सीजोन है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
1: ये प्रोजेक्ट हम लोग 5 साल पहले कुछ 8-10 दोस्तों के साथ शुरू किए थे। बंजर क्षेत्र है अर्पा के किनारे, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ हमने शुरुआत किए कुछ नीम, पीपल और बरगद का रोपण करके। लोग जुड़ते गए और आगे बढ़ते गए। आज 3,500-4,000 पौधों का एक उद्यान आप देख ही रहे हैं। और यहाँ लगातार सेवा भाव से हमारे उस पर्यावरण प्रेमी सदस्य लोग भी नियमित आते हैं। और एवरी संडे, प्रति रविवार को एकमात्र हम संगठन हैं जो केवल सुबह 7 से 9 पौधों पर काम करते हैं। उसका परिणाम है इस बंजर जमीन में आज पौधे 10 से 15 फीट के भी हो गए हैं।
0: जी हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जैसा कि मैं भी यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बंजर जमीन है, पत्थर ही पत्थर है। यहाँ खोदने के बाद भी अंदर मिट्टी नहीं, पत्थर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस बंजर जमीन को इतना हरा भरा कैसे बनाया?
1: हम लोग यहाँ गड्ढे खोदने के बाद उसमें मिट्टी बदलते हैं। पहले काली मिट्टी डालते हैं और उसमें रोपण करते हैं। उसका परिणाम है कि इस बंजर जमीन में भी, और निरंतर सेवा करते हैं, उसके परिणाम आप देख रहे हैं, पौधे तैयार हो गए हैं इस बंजर जमीन में। आज इस पूरे क्षेत्र में नौकरा नक्षत्र वाटिका भी बनने वाला है। और जो हरियर के रियल प्रोजेक्ट है, सर्वेश्वरी समूह आश्रम के बाद के जो नदी के किनारे के प्रोजेक्ट है, उसमें जितने पौधे लगे हैं, फलदार देव पौधे, छायादार पौधे, ये रोपण धीरे धीरे, एक दिन के नहीं है, ये 4.5-5 साल का मेहनत का परिणाम है।
0: बहुत ही ये अनूठा प्रयास है, एक अनोखा तरीका है कि बंजर जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें उपजाऊ मिट्टी डालकर उसे भी आप हरा भरा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और अनोखा प्रयास लगा, ये सोचने वाली बात है, हम भी अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। अच्छा भुवन जी, अभी आपने

0: कुछ नव ग्रह पौधों की बात की, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, थोड़ा चलिए आते हैं देखते हैं।
1: आप जानते होंगे हमारे ज्योतिष गणना या आयुर्वेद में ग्रहों का बड़ा विशेष महत्व होता है। यहाँ नव ग्रह के पौधों का रोपण किया गया। नव ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हर ग्रहों का एक पौधा होता है, वो पौधे यहाँ रोपण किया गया है।
0: बहुत बढ़िया। जैसे कि साथियों हम देख सकते हैं कि सूर्य के साथ जोड़ के यहाँ आंकड़ा पौधा लगाया गया है, चंद्र के साथ पलाश लगाया गया है, मंगल के साथ खैर, बुध के साथ अपामार्ग, गुरु के साथ पीपल वृक्ष, शुक्र के साथ गूलर, शनि के साथ शमी, राहु के साथ चंदन और केतु के साथ अश्वगंधा। बहुत ही बढ़िया प्रयास है,
1: ये नवग्रह हो गया। इसी तरह से अभी निर्माणाधीन है, कलेक्टर साहब और सीएमडी एससीसीएल के द्वारा नक्षत्र वाटिका बन रहा है। नक्षत्र वाटिका के बारे में बता दूं, हर इंसान एक नक्षत्र में पैदा होता है और हर नक्षत्र का एक देव पौधा होता है। सामने नक्षत्र गणना करें तो 27 नक्षत्र होते हैं। सारे 27 नक्षत्र का हर एक का एक अपना पौधा होता है, वो यहाँ डेवलप हो रहा है, वो रोपित किया जाएगा। एक बड़ा उद्यान बनने वाला है अभी और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया।
0: बहुत बढ़िया प्रयास है, प्रकृति और नक्षत्र को एक साथ जोड़कर उनकी समायोजिता में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा था आपने कहा, तो कौन कौन से वृक्ष लगाए गए हैं आज
1: यहाँ? आज दो आम के पौधे लगाए गए हैं जो हाइब्रिड है, जो 5 साल में फल जाएगा। एक लंगड़ा है और एक दशहरी आम है जो सुप्रिया मैम लगाई है हमारे बीच। आज हमारी अतिथि रही है और गुंजन अग्रवाल जी आई थी, उनके द्वारा दो आम के पौधे का रोपण हुआ है इस जोन में। जैसे कि चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के स्टूडेंट लोग आए थे यहाँ विजिट में, उन्होंने यहाँ अध्ययन करके बताया कि यहाँ 70 से 80 औषधि के पौधे हैं जो हमें भी नहीं पता था, हम 2-4 पौधों को ही जानते थे। यहाँ अश्वगंधा से लेकर अर्जुन तो अगर सब दिख ही रहे हैं आप, तो ये यहाँ पौधे रोपण है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के अनुसार 70 से 80 पौधे जो है विशुद्ध आयुर्वेद के हैं, जिसकी उनकी जरूरत पड़ती है।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो ये है यहाँ टोटल 3,500-4,000 पौधों का आपका संग्रह दिखेगा अरपा के तट में। और ये टोटल लैंड है 3,500-4 एकड़ की। इस बंजर जमीन भूमि में हरियर ऑक्सीजन विकसित किया गया है।
0: इस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से तो हम पूरी तरह से फल फूल रहे हैं, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के साथ साथ एक आयुर्वेदिक जोन भी बन गया
1: है।
0: अच्छा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस आयोजन से जोड़ने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं?
1: हम लोगों को पर्यावरण में जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनसे पौधा लगाते हैं। और पौधा लगाना ही आसान नहीं है, पौधों को जब तक आप निरंतर सेवाएं, जल सेवा नहीं देंगे तब तक वो वृक्ष दरख नहीं बन पाएगा। तो युवाओं से मैं हमेशा अनुरोध करता हूं, हमारे TNSS NCC के बच्चे यहाँ आते भी हैं, कुछ कुछ कार्यशाला भी आयोजित होती है और वो लोग भी यहाँ रोपण में अपनी भागीदारी देते हैं। मैं और बच्चों से भी अनुरोध करूँगा वो कभी भी हरियर ऑक्सीजन ज्वाइन करें और किसी भी रविवार को आएँ और पौधों की सेवा, पौधों का रोपण और उसको निरंतर सेवा करने से वो पौधा बनेगा, इस पर अपनी समाधान कर सकते।
0: अच्छा, किस तरह की कार्यशालाएं होती हैं जिससे युवा और जागरूक हो सके?
1: जैसे कि उनका ज्यादातर NSS NCC के बच्चे लोग कैंप करते हैं, हम कैंप के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, कुछ हमारे रोपित पौधे उनसे सेवा कराते हैं, कुछ पौधे उनसे रोपित कराते हैं, उनको संकल्प कराते हैं कि समय समय में आके इसको आपको जल सेवा और खरपतवार के साथ इसकी ध्यान रखना है आपको। तो उनके एक अटैचमेंट बनता है, ये पौधा मेरा रोपण किया हुआ है। तो इस तरह से NSS NCC के ज़्यादातर कॉलेजों से, अटल विश्वविद्यालय हो गया, DLS हो गया, DP, इनके बच्चे यहाँ बीच बीच में कार्यशाला में आते ही रहते हैं।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके इस प्रयास से हमारे शहर के युवा बढ़ चढ़कर प्रकृति को संरक्षित करने और उसको खूबसूरत बनाए रखने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल इस प्रकृति का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। प्रकृति भी, वसुंधरा माता भी हमारा भी उसी तरह ख्याल रखती है जिस तरह हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है। भुवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते हमारे श्रोता साथियों को कुछ संदेश दें।
1: संदेश यही है, जब पर्यावरण की बात आती है तो जब तक अपन हर साल देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हो या किसी और खास ओकेशन है, बड़ी बड़ी सामाजिक संगठने खूब पौधे रोपण करती हैं। रोपण करने का काम तो 2 मिनट का है, पौधा रोपण करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम ही लगता है। जब तक उसको हम निरंतर सेवा ना करें, जल सेवा के साथ उसकी रख रखाव, उनकी सुरक्षा घेरा के साथ उसको ना दें, तब तक वो पौधे पेड़ नहीं बन सकता। मैं हर एक से अनुरोध करूँगा भले एक पौधा लगाए लेकिन उसको निरंतर सेवा करें तभी वो पेड़ बनेगा। और ये परिणाम आप हरियर ऑक्सीजन में आके देख सकते हैं, या जितने रोपित पौधे हैं सब विकसित हैं, जीवित हैं, और कुछ पौधे तो 15 से 20 फीट के भी हो गए हैं। तो निरंतर सेवा बहुत जरूरी है पौधों के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इनसे ही प्रेरणा लेते हुए अभी तो बिलासपुर में केवल एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हम इसी तरह से निरंतर एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते रहें, जगह जगह पेड़ लगाएं और पूरे बिलासपुर को ही ऑक्सीजन बना दें, ये हमारा प्रयास है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पात पात बिरवा हरिया।

0: सच सपने कल के ज्योति कलश चल के।
1: तो साथियों चलिए चलते हैं और हमारे यहाँ इस आयोजन में उपस्थित कुछ युवा साथियों से भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे श्रोता साथी आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: मैं सौम्या अग्रवाल हूँ, मैं 22 साल की हूँ और करेंटली मेडिकल स्टूडेंट हूँ।
1: जी तो सौम्या जी, इस आयोजन में आके इस प्रकृति के लिए कर रहे प्रयास में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है?
2: मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैं आई थी यहाँ पे। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा, पर यहाँ पे इतनी शांति है और पर्यावरण के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो यहाँ आपने क्या क्या देखा?
2: यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्रीज़ हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे अराउंड 90 to 300 कैटेगरीज ऑफ ट्रीज़ हैं। अलग अलग टाइप के प्लांटेशंस हो रहे हैं, एक फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, एक छोटा सा पार्क ग्रो हो रहा है कह रहे हैं सर थोड़े टाइम में, जो बहुत सुंदर होगा, जो हमारे प्यारे शहर की सुंदरता भी बढ़ाएगा और हमें ऑक्सीजनेशन में भी हेल्प करेगा।
1: एक युवा होने के नाते सौम्या जी, आप बताइए कि इस प्रकृति, वर्तमान में जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण की स्थिति है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
2: मेरा ये विचार है, हम तो हमारे बचपन से पढ़ रहे हैं कि करेंटली ग्लोबल वार्मिंग कितना ख़राब चल रहा है और टेम्परेचर कितने हाई हो जा रहे हैं, तो उसके कारण हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ते हैं। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये देख के कि इतना अच्छा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो सौम्या जी, जैसा कि आपने कहा कि आप एक मेडिकल की छात्रा हैं, आप भावी डॉक्टर बनने वाली हैं, तो डॉक्टर होने के नाते आप क्या सजेशन देना चाहती हैं हमारे यूथ को, युवा को क्या बताना चाहती है कि किन कारणों से युवाओं का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनका दिनचर्या खराब होता जा रहा है और प्रकृति के प्रति हम अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे? तो एक डॉक्टर होने के नाते आपके क्या विचार हैं?
2: मेरा ये विचार है कि अभी हमारे जो डेथ के, मोर्टैलिटी के जो लीडिंग कॉजेज़ हैं, वो COPD, लंग डिसीजेज़, हार्ट डिसीजेज़ से हैं, जिनका कारण ये होता है कि ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है हमारी बॉडी तक। तो ये वृक्षारोपण कार्यक्रम उसमें बहुत हेल्प करेगा और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है वो सब कम होगा, तो हमें बहुत हेल्प होगी, हमारी हेल्थ भी बेटर होगी, इंक्लूडिंग हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ेगा हरियाली वगैरह देख के। तो ये हरियाली, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बहुत ही अच्छी बात कही, एक डॉक्टर, एक युवा डॉक्टर की ओर से हमें संदेश है कि प्रकृति से जितना ज़्यादा हो उतना जुड़े रहें।
2: मैं चाहूंगी कि हम सब वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जुड़ें, हम पेड़ लगाएं और इससे सुंदरता भी बढ़ती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी बेटर होता है। अगर हम हरियाली देखें, हम अच्छा वातावरण देखें, कोल्डनेस बढ़ती है, यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है, तो सबको इसमें जुड़ना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौम्या जी।
2: धन्यवाद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब भी सावन की पहली फुहार धरती के माथे को चूमती है, तब प्रकृति अपनी हरियाली की चुनर ओढ़कर मानो नवजीवन का स्वागत करती हो। हवा की हर सरसराहट में एक मधुर संगीत गूंज उठता है। पत्तों की थिरकन किसी नृत्यांगना के घुंघरुओं से झनकने लगती है और वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं से ऐसा प्रतीत होते हैं मानो वे संपूर्ण सृष्टि को अपने स्नेहिल आलिंगन में समेट लेना चाहते हों। इसी अनुपम सौंदर्य और जीवनदायिनी भावना का पर्व है वन महोत्सव। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वे धरती की धड़कन है, प्रकृति की श्वास है और मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन धरोहर है। यदि पृथ्वी एक जीवंत शरीर है तो उसके वन उसकी सांसें हैं। जिस प्रकार मनुष्य बिना श्वास के जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार धरती भी बिना वनों के अपनी जीवनदायिनी शक्ति खो देती है। वृक्ष मौन साधक हैं, वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर तपस्या करते हैं, स्वयं धूप सहते हैं ताकि हमें शीतल छाया मिल सके, अपनी जड़ों में वर्षा का जल संजोते हैं ताकि नदियां कल कल बहती रहें, और अपने पत्तों से वातावरण को निर्मल बनाकर हर प्राणी को जीवन का अमृत प्रदान करते हैं।

महोत्सव केवल वृक्ष लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर है। यह हमें स्मरण कराता है कि जिस धरती ने हमें जन्म दिया, जिस वायु ने हमें सांस दी, जिस जल ने हमारी प्यास बुझाई और जिस प्रकृति ने हमें जीवन का हर उपहार दिया, उसके प्रति हमारा भी कोई दायित्व है। एक पौधारोपण केवल मिट्टी में बीज डालना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आशा का दीप जलाना है। वह पौधा आने वाले वर्षों में किसी पथिक को छाया देगा, किसी पक्षी का आशियाना बनेगा, किसी बच्चे को शुद्ध वायु देगा और किसी किसान के खेतों में वर्षा का संदेश लेकर आएगा। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को सदैव पूजनीय माना गया है। पीपल, वट, नीम और तुलसी जैसे वृक्ष केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण

माना गया है। पीपल, वट, नीम और तुलसी जैसे वृक्ष केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तब वन महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए इस वन महोत्सव पर हम केवल पौधे ना लगाएं, बल्कि उनकी देखभाल का भी संकल्प लें, क्योंकि वृक्ष स्वयं धूप सहकर हमें छाया देते हैं, स्वयं मौन रहकर हमें जीवन देते हैं। यदि धरती को मुस्कुराते हुए देखना है तो इसके आंचल को हरियाली से भरना ही होगा। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं। हर पौधा भविष्य की धड़कन है, हर वृक्ष जीवन का आधार। वनों से ही मुस्कुराएगी धरती, वनों से ही सजेगा संसार। इसी के साथ साथ ही चलिए हम बढ़ते हैं और सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बोल बच्चन से। गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, इसे संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और इसमें स्वर हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल।

कार्यक्रम युवा जगत अभी हम सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आज शाम 6:20 और शाम 7 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम सुनेंगे वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा। साथ ही हम लेकर आएंगे सफल कृषक से भेंट क्रम में श्री श्याम लाल साहू, ग्राम बिरगहनी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा, और श्री रोहित साहू, मशरूम उत्पादक कृषक ग्राम मुलमुला विकास खंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा से राजू भैया की बातचीत। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। अनुराधा पौडवाल के गाए गीतों को सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत में रात्रि 8:00। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की। रात्रि 9:15 से लेकर रात्रि 11:00 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

साथ पशुपालन के समन्वय विषय पर वाचन स्वर होंगे चित्रलेखा तिवारी के। कार्यक्रम चिंतन होगा प्रातः 6:45 पर। विषय होगा सौजन्य, आलेख एवं वाचन होगा स्वामी आत्मानंद का। सुबह 8:30 पर हम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे। नए तराने का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम लेकर आएंगे सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। संदेश टू सोल्जर्स हम लेकर आएंगे दोपहर 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। शाम 5:35 पर होगा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें सामूहिक चर्चा होगी विश्व खेल पत्रकार दिवस पर। साथ ही क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति में सुनिएगा अल नीनो का पर्यावरण पर हो रहा असर पर चर्चा। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की।

0: शाम 6:20 और शाम 7:00 सुनिएगा। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा की गोठ में हम सुनेंगे वृक्षारोपण पर तैयारी कर विषय पर चर्चा। साथ ही शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें हम सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन। इस विषय पर फोन पर पूछे गए सवालों के जवाब देंगे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश पांडे। संचालन होगा राजू भैया का, साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली को हम लेकर आएंगे रात्रि 8:00। रात्रि 10:30 से समाप्ति तक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच द ओवल लंदन में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यही समाप्त होता है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभ मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू, इमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहल ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू, और 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपया के कमी, आज ले नवा दर लागू। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर में लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है कहीन की वीबी जी राम जी अधिनियम में अवैया ग्रामीण परिवार ला हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। एखले ग्रामीण भारत सशक्त बनी, वर्तमान वित्तीय बछर में ये योजना ला चलाए बर 95,692 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मा अवैया संशोधित पारिश्रामिक दर आज ले लागू हो गए है। राष्ट्रीय औसत पारिश्रामिक मनरेगा के 258.80 रुपया ले बढ़ा के विकसित भारत जी राम जी मा अवैया 327.40 रुपया रोज के कर देगे है। इसने पारिश्रामिक दर मा 10 ले ज्यादा के औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मा जहां पहली मजदूरी 300 ले कम रही उन्हें अब नवा दर लागू हो गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होयला एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताए है। श्री चौहान हा कहिन की ए अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिक मन बर गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करे के नवा अध्याय है। उन्होंने कहिन की ए अधिनियम गांव के हर एक परिवार ला 125 दिन के रोजगार के वैधानिक अधिकार देते। तेल विपणन कंपनी हा 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया के कमी करे है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नवा दर आज ले लागू हो गए है। एक कटौती के बाद

0: बाद अब 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मां 2,930 रुपया मां मिली। ए फैसला ले रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और आने खान पान के व्यवसायी मन ला लाभ मिली। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू हो गए है। अब उपभोक्ता मन ला प्रति यूनिट 30 ले 50 पैसा ज्यादा बिल देना होगी। गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर मां 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुए है। उन्हें कृषि पंप के दर 40 पैसा प्रति यूनिट महंगा करे गए है। एकरे संग नवा टैरिफ मां कतकोन बदलाव करे गए है। एमा बिजली बिल के पहली भुगतान करे जाए मां 1.25% छूट ला घटा के 0.75% कर दे गए है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय औसत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल में काम करैया पात्र शिक्षक मन के शिक्षा सत्र 2026-27 के आखिरी तक पुनर्नियुक्ति दे के स्वीकृति जारी करे है। इमा सहायक शिक्षक ले लेके प्राचार्य तक के शिक्षक शामिल है। लोक शिक्षण संचालनालय ला निर्देश दे गए है कि सबो जिला में जरूरी कार्यवाही जल्दी पूरा करे जाए। बीमित मनखे मन बर बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज ले अवैया बछर 30 जून तक बढ़ा दे गए है। एकरे संग नवा ईएसआई अस्पताल के प्रबंधन अब सीधा निगम डहार ले करे जाही, जेखर ले उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करे जा सके। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आज 11 बछर पूरा हो गए है। ए पहल ले देश भर मां नागरिक ले जुड़े सीखे लेन देन करे और सरकारी सेवा के लाभ उठाए के तरीका ला बदल दे है। पाछू 11 बछर मां भारत हा दुनिया के सबले बड़का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ला एक तैयार करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहे है कि डिजिटल इंडिया अभियान हा सुशासन ला नवा दिशा और देश के सबो विकास काम ला गति दे है। उमाना कहीन है कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिया ले सरकारी सहायता पारदर्शिता के संग सीधा लाभ पवैया मंत्री पहुंचत है। उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाघलो आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये योजना 1 जुलाई 2015 के शुरू करेगी रही। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और कृषि भूमि ला सिंचाई के दायरा में ला के खेती में बड़का बदलाव लाए में मददगार साबित हुई है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार को ती। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाए जाते। ये दिवस जन स्वास्थ्य के रक्षा के प्रति डॉक्टर मन के समर्पण और योगदान ला दिखाते। ये दिन हर बछर 1 जुलाई के डॉक्टर विधान चंद्र राय के जयंती और पुण्यतिथि के याद में मनाए जाते। ये बछर के विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मा देश के सबो डॉक्टर मन ला शुभकामना दिन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मा आज छत्तीसगढ़ मा घलो आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। गौरेला पेंडा मरवाही जिला मा स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर मा अधिकारी और कर्मचारी मन बर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन करेगी। शिविर मा 55 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के स्वास्थ्य की जाँच करेगी। राज्य शासन हा कोरिया जिला के सोनहत इलाका मा बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड के जांच सीबीआई ला सौंपे के अधिसूचना जारी कर दे है। जानबा के मुताबिक पाछू 16 जून के नवगई निवासी भरत सिंह घरवार उर्फ लल्ला सिंह के संग नागेंद्र सिंह और वीरेन सिंह के कार मा जिंदा जला के हत्या कर दे गई रही। ए मामला के जाँच अब सीबीआई कर ही। जांजगीर चांपा जिला के बम्बनीडी नगर पंचायत मा नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह काली 2 जुलाई के आयोजित करे जाही। समारोह मा मुख्य अतिथि के रूप मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल ही। उन्हें कार्यक्रम के अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण सावकर ही। समारोह मा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सबो नवनिर्वाचित पार्षद पद और गोपनीयता के शपथ लिही। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग धमतरी जिला मा एक औ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के स्थापना ला मंजूरी दे दे है। एक नवा एकलव्य विद्यालय मा छात्र छात्रा के विकास बर विश्व स्तरीय सुविधा मुहाये करे जाही। संगे संग विद्यार्थी मन ला नीट जे

0: ईई अउ क्लैट जइसन राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षा भर अनुभवी शिक्षक मन डहर ले विशेष कोचिंग अउ कैरियर काउंसलिंग दे जाही। नवा संस्थान के शुरू हो जाए ले जिला के दुर्गम अउ वन क्षेत्र के होनहार आदिवासी विद्यार्थी मन ला आधुनिक उत्कृष्ट अउ निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिल सकी। जानवा के मुताबिक जिला के नगरी विकास खंड के पथरीडीह मा पहली ले एक आदर्श विद्यालय संचालित है। कांकेर जिला मा भानु प्रतापपुर पुलिस अउ एंटी पोचिंग टीम हा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा मा वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क के खुलासा करे हे। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन विभाग अउ पुलिस के संयुक्त कार्रवाई मा दू बाघ के खाल के संग दू आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गे हे। जांच मा आरोपी मन तिल्ले पेंगोलिन के शल्क घलो बरामद करे गे हे। दोनों आरोपी पुलिस विभाग ले जुड़े बताए जावत हे। अउ अब थोरकून समाचार सार मा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर ला शैक्षणिक सत्र 2026-27 बर 125 एमबीबीएस सीट बर मान्यता के नवीनीकरण प्रदान करे हे। राज्य शासन हा श्रम विभाग मा 11 अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश जारी करे हे। सबो अधिकारी मन ला प्रशासनिक दृष्टिकोण ले अवैया आदेश तक नवा पद स्थापना दे गे हे। उहे 33 जिला मा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के घलो तबादला करे गे हे। कोंडागांव जिला के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हा स्टेनोटाइपिस्ट के नामांतरण के मामला में एक किसान ला 10,000 रुपया की रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे हे। रायगढ़ जिला के घड़घोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग के टीम हा कुरकुट नदी ले रेत के अवैध परिवहन करत 12 ट्रैक्टर ला जब्त करे गे हे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौ फेर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज ले छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा लागू। एमा 125 दिन के रोजगार के गारंटी होही। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग डहर ले तय बिजली के नवा दर आज ले लागू। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम मा 183.50 रुपया के कमी आज ले नवा दर लागू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई यानी कि कल स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर विनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई और 3 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रेणु रजनी, प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, पौड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्विक और हिमाक्ष, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर।

वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। तीव्रता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और इनके साथ है लक्ष्मी थदवानी। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन। बेंगलुरु जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। महसूल सीतामढ़ी, बिहार से मुसरत जहानाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। चिनमेरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। रघुनाथपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हिमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष, रोहित राज। गावनाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं संगम फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा होगा।
1: कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना संगम फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सौदागर फिल्म का गीत। कविता कृष्णमूर्ति और मनहर उदास की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष रवि शनी, रेयांश कान्हा और आदित्य देवांगन। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द राहुल। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। बरेली, कैंट, चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। खोंदला, उदयपुर, सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साह, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। भिलाई तीन से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, नीरज, शुभम, सौरभ रावत। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाव्या, आरव, एस के पप्पी। मुंताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला, ओम कुमार सुरड़कर। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही, इमरान अहमद, आसमा, नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फुलवाले। दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम और आसमा। आइए आप सबके मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई और 3 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनने का अगला और अंतिम। फरमाइशें गीत सुनना चाहते हैं राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल और मेरा दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सईद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, भिलाईनगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, लोतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असीज, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, लोहारीडीह जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, ललिमा, खुशांत और निशांत साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन, लोतरा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय और अलकबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब इरफान मोहम्मद, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान बोड़खे, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी, फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, पूर्ण जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीना, विनय शंकर पांडे। आइए आप सब मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ताल फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है हरिहरन सुखविंदर सिंह ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह के गाए ताल फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए।

0: हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। वीबीजी रामजी अधिनियम आज से देशभर में लागू। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जीरामजी अधिनियम आज से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लागू हो गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह से मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
6: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
5: श्री चौहान कल 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकास खंड की गंडई खुर्द ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। योजना के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक देने होंगे। गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि पंपों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई हैं। इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25% छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थीं। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन के अंतर्गत दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 13 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से बदला जाएगा। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपए में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा।

0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरेलापेंड्रा मरवाही जिले में स्थित पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 55 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की स्वीकृति जारी की है। इसमें सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य भी शामिल हैं। लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी की जाए। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल 2 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश कुमार डटसेना और सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य शासन ने कोरिया जिले के सोनहत इलाके में बहुचर्चित नवगई तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि बीते 16 जून को नवगई निवासी भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिला कार्यकर्ताओं के लिए बूथ स्तर तक डिजिटल प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, इतिहास, नमो ऐप के उपयोग और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में एंटी पोचिंग टीम ने महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बाघों की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आरोपियों के पास से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी पुलिस विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोरबा जिले में कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरीकला में आज 3 नकाबपोश लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार ये नकाबपोश एक मोटरसाइकिल से ग्रामीण बैंक के पास स्थित ज्वेलर्स दुकान पहुंचे और दुकान संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी MB पटेल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश स्थानों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम

0: विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक इस मानसून के दौरान मौसमी वर्षा सामान्य से 60% कम दर्ज की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित सहयोग केंद्र में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104,54,00,000 रूपये से अधिक की राशि जारी की है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 150 MBBS सीटों की मान्यता का नवीनीकरण प्रदान किया है। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने धमतरी जिले में एक और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने स्टेनोटाइपिस्ट को नामांतरण के एक मामले में किसान से 10,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कुरकुट नदी से रेत का अवैध परिवहन करते 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। VBG रामजी अधिनियम आज से देश भर में लागू। इसके तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर में 13% की वृद्धि की गई। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू। रेलवे ने दुर्ग तारोकी खंड के 13 स्टेशनों पर 226 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की स्थापना को दी मंजूरी। और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपए की कमी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार यानी कि कल 2 जुलाई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई और 3 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के इस भाग का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, साजिद शाहिद, सांदूल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश निवान, सौरभ सायना और मैंडी शर्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजम उल हुदा, SM जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत, मंजू और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गम्हाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि गम्हाणकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा सुजाता पोहरकर, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पड़ोटी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पड़ोटी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख,

प्रणाली, सरवद, सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, गांधीबाग कोलो से रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सनौरा दीबा, मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप, आरजू गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और मकर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम मलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत, संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है रेफ्यूजी।

मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां मन्नत इशरत और मकर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम मलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। संगीत अनु मलिक का है, फिल्म का नाम है रेफ्यूजी।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना रेफ्यूजी फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के गाए ये दिल्लगी फिल्म के गीत को, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है दिलीप सेन और समीर सेन का। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद पुष्पेंद्र सिंह दूदी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहितान्या नारंग, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम धुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख कल्ला बख्श, राविया शेख और शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वरशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती ये इनके साथी हैं। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, पोफाली जिला यवतमाड़ से जयराम सिंगणकर, दीक्षांत और अर्पिता, राजकोट से

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कार्यक्रम का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत है फिल्म तुम बिन से। अनुराधा पौडवाल और रुदित नारायण की आवाजें हैं। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रगेश, प्रीतेश संघई, यवतमाड़ से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी मनवर और इनके साथ है प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यवतमाड़ महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आड़ोकर, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, धरदई सरगांव से चंद्रलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत कृष्टि पटवा, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता एकांश गवाणकर, पैठण से सुरेश जाधव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिंह जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित, हैप्पी राय, दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, लसुड़िया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाड़ से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, आराध्या साहू, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल पूजा,

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के गाए तुम बिन फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला महंगू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है। जिला कतको जगह में कृषि दिवस के रूप में मनाए जाते, और फिर आज भाई देखो तो वन महोत्सव घला हवे। 1 जुलाई ले लेके 7 जुलाई तक के वन महोत्सव चल ही। ए प्रकार ले देखे जाए ते सब बात है, हमार जौन समस्या है पानी के देखा था अभी, है ना भाई। और बादर पानी अतका लेट करके आए है, अबेर करके आए है, जिन हर पेड़ पौधा ले प्रभावित जरूर होते। ए प्रकार ले देखे जाए तो पेड़ पौधा के कमी ला इशारा करते, यानी कि पेड़ पौधा के कटाई हो है, जंगल वन हा उजरे है। और ए प्रकार ले देखे जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के, यानी कि फलदार पौधा ला लगाए के बाद सभी के जिम्मेदारी बनते। और ये अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस कृषि दिवस ला अगर मनाना है सही में कहे जाए तो बहुत बढ़िया समय आए हवे। हम तो कहते नहीं आमा के आम और गुठली के दाम कहे जाते, तो आमा के गुठली फेंकाओ झन। ये समय जामुन घला आवत है, जामुन ल खावा था और गुठली घलाओ फेंकाओ झन, कोनो मेर छींच दो सड़क के किनारे किनारे जहाँ मिला थे जगह। तो वह पौधा एक फलदार पौधा बहुत के रूप ले लेके कुछ बछर में वो तैयार हो जाए। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और कृषि दिवस वन महोत्सव की गुड़ बात। अब अगर बात करबो पानी के जैसन गुड़ बात करें हम, तो सिरतोन में अगोरा

रही से पानी के काले परो दिन ले कहे जाए पूरा जून ना का दिस अवे दे आषाढ़ लगे तो दे पानी थोड़कन गिरत हवे। अब अगर बात करबो तो अगर हमार किसान भाई मन ये पानी के बढ़िया ढंग से जुगाड़ बना के कोनो न कोनो प्रकार से रोके का प्रयास नहीं करही तो समस्या गढ़ा सकत हवे। अब जतका भी पानी गिरही तो वो पानी हर बड़ा महत्व के है। हम तो यही कहबो कि वो हर पानी नोए अमृत है तो भाई काबर नहीं। अब ये ले चेत करन और हम सचेत हो जामन ये अमृत रूपी पानी ला सकेले बार संजो के राखे बार। वर्षा जल संचयन ये वो प्रक्रिया है जिमा वर्षा के पानी ला इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करे बर सुरक्षित रखे जाते। यह जल संकट ला कम करते और भूजल स्तर ला बढ़ाते घला। और जल संचयन के उपयुक्त तो उपाय की अगर बात करबो तो जौन छत है खपरा हवे उकर उराती में जून पानी आते वर्षा के पानी ला पाइप के द्वारा टैंक में भरे जा सकत हवे। रिचार्ज पीट जून सोखता कहे जाते गड्ढा ओहुल बनाया जा सकत हवे। तालाब तरिया है झील है और कुआं है इमा जल संरक्षण जरूरी अपनाना हो ही। पारंपरिक जतका भी पानी के स्रोत हवे ओखर नियमित सफाई करना गला जरूरी हवे और रख रखाव करना बड़ जरूरी हवे। चेक डैम और छोटे छोटे बांध बनाना गला बड़ा जरूरी हवे। ये समय ये प्रकार ले अगर वर्षा के जल के पानी के कहे जाए ला रोके जा सकत हवे। वो पानी के उपयोग सिंचाई जन फसल है खेत है ओकर बर बहुत उपयोगी रही। खेत में ही डबरी डबरा बना के हमारे किसान भाई मल्ला वर्षा के पानी ला रोकना चाहिए जेखर ले वो पानी है जब कथे नहीं कि एक पानी बार फसल है नुकसान हो गए दो पानी बार फसल नुकसान हो गए तो वही पानी ले एक दो पानी बार जब फसल है मार खा जाते तो वही पानी है काम ही। ए प्रकार ले

कि अब पानी एती गिरत हवे तो एती ओती झन जावे, ओ पानी ला रोक के राखी के प्रयास करे जाए। ये तो हमर भाई बात रही। अब आप मन जानो, अगर ये बात ला नहीं मानी हो, नहीं करी हो, तो कतेक दिन जोन पानी गिरे है रुक पाही? ऐसा है देखा तो कतेक गर्मी पड़त हवे, अब ऐसा है कतेक परेशानी आवत हवे, पानी के किल्लत हवे। तो ही बार तो कथे भाई, जे दिन कुआं के पानी अटा जाही, ये सुघर संगीत ला गावत हमें चतुर राम साहू और उनकर संगवारी मन। तो लियो सुनो ये गीत ला।

0: अभी सुनेन सुघर गीत, जे दिन कुआ के पानी अटा जाही रे। ये गीत ला गावत रहिन चतुर राम साहू अहुनकर संगवारी मन। सूचना बता दे थन पहली संदेशा ला बता सुनाबो अपन ला। कार्यक्रम संबंधी सूचना हवे, गुरुवार और शुक्रवार के दिन संध्या जुवार 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, जेमा किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मन सो फोन में सवाल पूछ के समाधान ला पाते हैं। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 के कहे जाए तो स्टूडियो में हमार कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे जी मन उपस्थित रही। इनकर मनसो बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हो। विषय है वह धान फसल में जल प्रबंधन और बिहनिया 11 बजे ले 11:30। दूसरिया विषय है वह दलहनी तिलहनी फसल में जल प्रबंधन। ये विषय ले संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर हमार फोन नंबर है 2665932106। ये फोन नंबर लगाए ले पहली हमार बिलासपुर के एसटीडी कोड ला लगाए ला झनबुला हो 07752 जरूर लगाओ। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 के संध्या जुहार 7:30 ले 8 बजे तक आप सुन सकते हो। ये तो ही सूचना कार्यक्रम संबंधी। आओ अब ये संदेशाला सुन ले जाए।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: आज के दिन अगोरा रथ है बुधवार के दिन और सफल कृषक ले भेंट क्रम में श्री श्याम लाल राठौर ग्राम बिरगहनी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के मन किसान हवे। इनकर मनसो राजीव भैया मन भेंट करे हवे। आवो ये भेंट वार्ता सुन ले, तेकर बाद में फिर और किसान घला हवे ओहला सुनबो। तो आओ सुनो ये सफल किसान ले भेंट क्रम में ये कार्यक्रम ला।
3: किसान भाई हो, लगातार कार्यक्रम के माध्यम ले हम आप मन ला जानकारी देवत रथन। श्री अन्न जिला हमन कथन मोटा अनाज के खेती कोदो कुटकी रागी और किसान के भाग जागी ऐसे हमन गोठियात रथन। अन्न भाई, हमार बीच रागी के फसल लेवैया श्यामलाल राठौर जेमन गांव बिरगहनी चापा के रही है विकास खंड एमन बलौदा के। राठौर जी, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जवाहर। राम राम।
4: राम राम।
3: ये बता दे, कतेक बछर हो गया आपला रागी के खेती करत?
4: रागी खेती करे ले तो हमन बहुत कम अभी करे हमन। हाँ। शुरुआती दौर में हवा बहुत पहली मैं गनियारी गए रहे, वहाँ रागी खेती देखे रहे, वहाँ हॉस्पिटल में गए रहे,
3: जन स्वास्थ्य केंद्र।
4: हाँ, तो ओला आज देखे के बाद मतलब यहाँ थोड़ा बहुत ओला करे लगे, लेकिन आज की परिवेश में जो हवा धान के खेती गर्मी में जो छत अपन जांजगीर जिला में जो होत हवा ओला रोके के एकमात्र उपाय हो सका थे अपन जो रागी की खेती करे जाए। अपन शक्ति जिला में जो मालखुर्दा ब्लॉक में हवा वहाँ मतलब आने रोपाई करके रागी खेती करे जाते और बहुत ज्यादा उत्पादनों का लिए जाता हवा। तो ओमा ले एक तो धान के मतलब आने कीमत किसान मन मिल नहीं पाता हवा और रागी की फसल ले लो किसान मन की आमदनी बढ़ाता हवा। दूसरा हम लोग गर्मी में धान के विकल्प के रूप में मतलब पानी के भीतर अपन जांजगीर तहसील में कथन कि नहर के पानी आए है तो आने फसल नहीं हुए धाने छोही। हाँ। तो रागी की रोपाई करके आराम से पोकर फसल लिए जा सका।
3: नहर के नाले है ना। हाँ। हमारा छत्तीसगढ़ के कलाकार गाते कि नहर के पानी भागे ला टारे तार। हाँ। हाँ। और रागी लगा ले जिनकी बन जाए उद्धार।
4: हाँ, हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
3: मतलब रागी लगा के हमारे अपन जिंदगी में परिवर्तन ला सका। तो एक बार ये बता दे, भूया के चुनाव कैसे करे?
4: हर प्रकार

0: के भूमि में रागी हम अतवाने क्योंकि पानी में डूबे रहते तब होकर फसल होते जैसे धान होते थे इसने
1: हाँ।
0: भाटा बुरा में धोबे करते जहाँ पानी के साधन नहीं है
1: जी जी।
0: लेकिन जहाँ पानी वहाँ रोपाई करके ओकर फसल लिए जा सकता
1: वाह वाह वाह मतलब हमर किसान भाई मन भाई रागी वरदान बन गए
0: वरदान बन सकता था वह और किसान मन की आमदनी बहुत ज्यादा वहाँ बढ़ सका था वह।
1: अच्छा अच्छा सर का फसल का नाम कहते रहा अपन
0: कुटकी।
1: अच्छा
0: कुटकी है कोदो
1: है मिलेट फसल है
0: मिलेट फसल है सब
1: हाँ।
0: तो एमन ले फायदा है लेकिन दुर्भाग्य हमारे ये है कि शासन में जो नीति कहीं लागू होते कहीं नहीं होए
1: हाँ।
0: जैसे रागी की खेती करवाए की शुरू करी तो माल खरदा साइड में करसिया साइड में तो रजिस्ट्रेशन करवा दिन बीज निगम में
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन और जांजगीर जिला में लागू ही नहीं करी
1: हाँ हाँ।
0: थोड़ा बहुत किसान में लगी नौकर हतोत्साहित होगी
1: यार
0: के उनकी जो पैदावार हो कोई लेने वाला नहीं
1: हाँ।
0: जब वहाँ सब मतलब बीज निगम मन खरीद ली
1: जी जी जी।
0: तो पॉलिसी ये टाइप के बनाया जाए जो एक सिंचित एरिया है ओला मतलब हर हालात में धान मतलब गर्मी फसल में दूर करे वह एकमात्र उपाय रागी
1: है। रागी की खेती करे के अपन अनुभव बताओ हमारे कार्यक्रम के किसान भाई
0: मतलब रागी की खेती चूंकि हम प्रारंभिक स्टेज में हवन लेकिन जब का जानकारी बाहर ले हैं हम अंत में सबसे ज्यादा उत्पादन अभी सिर्फ मालखरदा ब्लॉक में ले था है।
1: वाह वाह वाह
0: और ओकर हमला अनुसरण करना चाहिए।
1: तो जिसे आप गनियारी में जाके सीखे के बतावा था
0: हाँ।
1: का बात सिखाऊ
0: वहाँ मैं पहली जैविक किसान हूँ तो जैविक किसान मन में जब का हमारे देसी धान रही से ओकर 30 प्रकार के धान के कलेक्शन करे वो कुछ बीज के धान मोला बीजा ले मैं वहाँ जो चिकित्सालय है वो मन के जो फार्म हमें तेमल बीज हासिल करे वे रहे हूँ कोई दिन मन के सामने जहाँ बीज ले रहे तेज पर फसल लगे रही रागी वगैरह सब जानकारी ले तब मोर इच्छा हुई इसकी रागी भी मोला करना चाहिए करके
1: जी, जी, जी।
0: तो थोड़ा सा मात्रा मोला करे लगे और कोई भी फसल हम एकाएक ज्यादा मत ली
1: हाँ।
0: थोड़े ली ताकि मतलब ओकर अनुभव हमला हो।
1: ये बता दे जहाँ तक बात करबो रागी के अंतर्वर्ती फसल के बात करबो तो कुटकी ले सकते संग में
0: पानी के साथ कुटकी यानी वो डीपरा में होते
1: वहाँ
0: उच्चन जमीन चाहिए
1: कुटकी के विशेषता का होते उपयोगिता
0: तो मिलेट फसल है
1: हाँ।
0: मिलेट फसल हो कारण का है वो किसान मनबा
1: हाँ।
0: या जो आज शुगर बीपी जो बढ़े जा था वह
1: हाँ।
0: एक मात्र रोग था मतलब मिलेट फसल ये कर सकते थे
1: हाँ।
0: धान फसल धान्य फसल तो हूँ मने
1: जी, जी,
0: मोटा अनाज कहलाते
1: हाँ।
0: लेकिन हम जो धान के खेती कर
1: था
0: रासायनिक खाद के भरमार है और दूसर मतलब माने की दवा के भरमार है।
1: आप मन दवा और रासायनिक खातु के नाम और लल्ले था राठौर जी तो हमारे मन में एक बात आते अनाधुन पेस्टिसाइड के छिटके ले या फिर अनाधुन रासायनिक खातु के डारे ले कहीं न कहीं धरती माता के स्वास्थ्य में तो विपरीत प्रभाव पड़ा थे और कभी कभी ऐसे लगते कि हम अन्न उत्पादन नहीं करके हम जहर को उत्पादन करना
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इसलिए कि छत्तीसगढ़ में पहले कैंसर नहीं थी
1: जी जी।
0: लेकिन हमारे
1: अत्यधिक
0: मात्रा में मतलब पेस्टिसाइड का उपयोग करने के कारण हम पंजाब के मतलब करीब आ गए हैं और वहाँ से जो बीकानेर एक्सप्रेस कैंसर एक्सप्रेस चलती है उस स्थिति में छत्तीसगढ़ भी अब आने वाली है आने वाले
1: उपाय
0: प्राकृतिक खेती करें और प्राकृतिक खेती करें लेकिन उसमें होना ही चाहिए कि जिला स्तर पे जहाँ भी कलेक्टर हैं उनको मतलब आने की कृषि विभाग के डीडीए केवीके और अपने जो महाविद्यालय कृषि है उसके एक कमेटी बनाना चाहिए और प्राकृतिक खेती हर ब्लॉक में चार गांव पांच गांव में प्रारंभिक स्टेज में कराना चाहिए और उसका जो फसल आए प्राकृतिक खेती में उसकी अंतर फसल जैसे कि अपना 21 क्विंटल गवर्नमेंट खरीदती है मान लीजिए प्राकृतिक खेती हम करते हैं और उसमें 16 क्विंटल आई
1: हाँ।
0: तो 5 क्विंटल की भरपाई के अनुशंसा शासन को भेजे
1: अच्छा।
0: ताकि उन किसानों को जैसे अभी धान के फसल को छोड़ने पर सरकार 15,000 रुपया देने के लिए तैयार है।
1: अच्छा, धान के विकल्प के रूप में जिन कहे रागी की बात ला तो उत्पादन में का एकर प्रभाव पड़ा कते करे एकर पाछ उत्पादन होत
0: है उत्पादन का है जो धान जतका भी हमार मिलेट फसल है वो हर कम आते
1: हाँ।
0: और धान फसल है मतलब आने की अंधाधुन खातू और दवा की इस्तेमाल करे के कारण
1: वो
0: बहुत ज्यादा आते बहुत ज्यादा आते तो किसान का पैसा गदगदा जा था वह लेकिन सदुपयोग किसान नहीं कर पा था वह सदुपयोग करे के
1: आते देखे के नजरिया घरों बदल गए
0: हवा हाँ।
1: तो ये बता दो रागी के खेती के बात जब चल गए कोदो कुटकी के खेती के बाद जब चल गए आपके जीवन रेखा में का कैसे बदलाव ऐसे
0: मोर जीवन रेखा में तो ऐसे है कि

0: मैं 68 के समय की स्नातक हूँ।
1: वाह वाह वाह।
0: लेकिन मैं अपन परिवार में कभी भी कहूँ नौकरी करें दे, मैं 64 सदस्य हम होते मोर परिवार में,
1: संयुक्त परिवार।
0: हाँ, लेकिन संयुक्त परिवार होते भी अब 7 फैमिली हो गए हैं, लेकिन सद्भावना हमन को उतके छावा है।
1: जी, जी, जी।
0: सबसे बड़े बात मैं आप एक ठो बताता हूँ, जरा सुन के आप भी आश्चर्य करिया कि मोर जो 64 हाँ उमा आपके 18 मोर नाती हमें परिवार में,
1: जी जी,
0: 3 जन बेटा है, 7 जन पति, 28 आदमी रोज अपन काम करे जाते हैं। हमारे यहाँ नौकरी कहूँ नहीं करन, खुद के काम करथन।
1: आओ एक बात आपले पूछना चाहता हूँ, जुड़ना आप सियाना पारंपरिक खेती की बात आप चर्चा चला था राठौर जी। पेड़ तो हम भर ले रागी के भात ले, अब दलहनी फसल हम बात करबो तो राहर के रकबा धीरे धीरे कम हो जाते, ऐसे हमला अनुभव थे, का कहना चाहता
0: है? राहर मुख्य रूप से मेड़ के फसल रही से।
1: जी जी जी।
0: और मेड़ फसल के रहे के बाद गाँव मन की व्यवस्था है, पंचायत राज आए ले विकास के माध्यम तो माने गए होला।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन ग्राम पंचायत राज विनाश के कारक बन गए हमें। गांव की व्यवस्था ला ग्राम पंचायत के जो पंच हमें सिर्फ पैसा के पीछे भागा था हमें। और जो
1: कृषि
0: के विकास कम होता हुआ है। सबसे बड़ा समस्या जो आने वाला वक्त हवा है पानी के हवा है। पानी के एकर बा हवा है कि आज जो हमारे खेती के सिस्टम हवा है लेवी पद्धति, लेवी पद्धति करथन तो खेती ट्रैक्टर चला था हवा है तो जमीन में 1 फुट लेयर बत हार्ड वो तैयार होता हुआ है चक्का के मार खा खा के, तो जमीन के भीतर पानी नहीं जाता हवा है। और जितका भी सांप पीछू जो भी जीवधारी रही है खेत मन में वो पेस्टिसाइड के उपयोग करके हम मार डालें तो जमीन में छेदन करने वाला जितका जीवधारी रही वो मन खत्म हो गई, तो पानी जमीन के नीचे जा नहीं है तो पानी आ ही कहां ले।
1: ठीक,
0: तो सबसे बड़े समस्या पानी के हवा है। अभी तक हम सिर्फ कंक्रीट लमाना था कि पानी जमीन के नीचे नहीं जाते करके।
1: रागी के जहां तक बात करबो के कुटकी के बात करबो, एक हमन बीज उत्पादन कार्यक्रम में संबंध में जानना चाहो, एक कुछ चला थे का आपके?
0: अभी बीज उत्पादन कार्यक्रम माल खरदा साइड हो हवा है, और अभी केवी के मतलब केवी के नहीं आपके बीज निगम जांजगीर वहाँ, अब वो बीज आए के शुरू हो जाए वहाँ किसान मतलब सप्लाई हो ही कृषि विभाग के माध्यम से, इससे जानकारी मिले है।
1: चलो श्याम लाल राठौर जी, आप मन बीरगहनी विकास खंड बलौदा बाजार जांजगीर चांपा के रहिए किसान, और आप मन जिन रागी फसल के बारे में बढ़िया अनुभव बताया है और आपके दे जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन फायदा उठाई इतने कम समय दे आप मन आकाशवाणी ला।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सफल कृषक ले भेंट क्रम में ये रहिन श्री श्यामलाल राठौर ग्राम बीरगहनी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के किसान, इनका सो राजीव भीमन गोट बात कर रही ने। ये दूसरिया किसान जो हमें श्री रोहित साहू जो उनकी मशरूम उत्पादक हमें ग्राम मुलमुला विकास खंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के मन हमें, इनकर सो राजीव हेमन गोट बात कर रहे हैं, आवो केला सुन ले जाए।
1: किसान भाई हो, आज हमारे बीच है ग्राम पंचायत मुलमुला विकास खंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के किसान रोहित भाई, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहर, राम राम।
3: हाँ, राम राम।
1: ये बता दे, मशरूम के खेती करत कते का समय हो गया आपला?
3: मुला यहाँ 8वां साल है।
1: अच्छा, ये 8 बच्छर के पूरा अनुभव ला आप तक हम लेना चाहबो भाई। ये बता दो, कैसे आपके मन में जागीच के हमारे मशरूम के खेती करी की के?
3: देखे किसान मन अपन पैरा लोग बहुत जलात रही से, वो क्या थे एक समय कोरोना काल से जस्ट पहली पैरा मशरूम के खेती के बारे में सुने रहे
1: जी,
3: ताले यहाँ ला कृषि विज्ञान केंद्र जाके ट्रेनिंग वगैरह ले हैं वहाँ ला, ट्रेनिंग ले के बाद फिर काम ला चालू करे वहाँ ले।
1: अच्छा। हाँ। तो ये ट्रेनिंग में आप ला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पन का बात ला बताएं?
3: जैसे कि क्या थे पूरा शुरू से लेकर आखिर तक सब बता रही है, जैसे क्या थे फॉर्मलिन के कितना इस्तेमाल करना है, बॉवेस्टिंग का कितना इस्तेमाल करना है
1: जी,
3: कैसे बेड लगाना है, कितना नमी होना चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, सभी चीज बारीकी से सिखा रही से
1: जी, जी, जी, जी।
3: ओकर लाभ आज भी मिला थे, बढ़िया है सब कुछ।
1: तो ये 8 बच्छर में अपन कौन कौन मशरूम के तकनीक ला सीखे हो बतावा ना?
3: अभी जैसे कि हम अनुहल बनायल सीखे रहे, बंडल बनायल सीखे रहे हमन।
1: अच्छा।
3: बंडल बना हाँ, पैरा के बंडल बनायल सीखे रहे, तो आमदनी है कुछ कम हो जाती रही से, लेबर कॉस्ट वगैरह ज्यादा पड़ जाती रही से, शुरू साल में बंडल बनाए में 1,00,000 रुपए खर्च कर रहे हैं।
1: अच्छा।
3: मैं लेबर कॉस्ट दे रहे हैं केवल बंडल बनाए में, फिर मैं सोचे आमदनी कुछ कम होते कुछ क्या थे कॉस्ट ला कुछ कम किया जाए, वो क्या भी हमन सांचा विधि से बनाए चालू करें, सांचा विधि से बनाए चालू

0: करें तो वो साल शुरू साल तुम्हें 1,25,000 के बेचे रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, शुरू साल में ही 1,25,000 के बेचे रहे हैं।
1: वाह वाह।
0: ओकर बाद फिर जब दूसरा साल चालू करे बंडल बनाए चालू करे बंडल बनाए तो हमन लगभग 4.5-5 लाख पौने 5 लाख के बेचे तो उमा आगिस लगभग खर्चा 3 लाख के आसपास खर्चा आ गए। तो फिर कैसे किया जाए, खर्चे ज्यादा आता आमदनी कम होते। फिर हमन एक ठीक सांचा बनाए, सांचा बनाए के बाद फिर बंडल ना बना के लेयर बाय लेयर मशरूम क्या पैरल रखे स्पॉन ला डालिन लगाए तो बहुत अच्छा इसमें फ्रूटिंग है। थोड़ा कम आई से लेकिन लेबर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो फायदा बहुत अच्छा रही से।
1: तो कौन कौन किस्म के मशरूम के उत्पादन करते हैं?
0: अभी हमन पैरा मशरूम में ही ज्यादा उत्पादन करते हैं, वही मेन मन के काम पैरा मशरूम के ही है।
1: अभी आप मन चर्चा के दौरान बता दे कतको जी किसान भाई मन पैरा ला जला लेते जिन्हें पर्यावरण बहुत नुकसान पहुँचाते
0: हैं,
1: तो पैरा बहुत ज्यादा उपयोगी है मशरूम पर।
0: मशरूम बहुत उपयोगी है, मोर बताओ एक ठीक खजाना है कोई कम नहीं है।
1: कचरा खड़ा ही रहे
0: जेकर बहुत उपयोगी है, जेकर से पैसा निकाल सके थे तेकर बहुत उपयोगी है। मैं तो पैरा ला देखता हूँ तो क्या मुर्गा ही 400-500 ट्रैक्टर पैरा है भाई।
1: वाह वाह वाह।
0: और लगभग अभी मैं कम से कम अभी 10-12 जिन अभी रोजगार देता हूँ। अभी मोहरा अभी 10-12 जिन के अभी काम करे थे अभी जब तोड़ाई के कार्य चालू हुई तो कम से कम 4-5 आदमी और लगी।
1: अच्छा।
0: और कम से कम 15 जिन मुर्गा बेचोइया है।
1: वाह वाह। पहले ये बता दे कते कम रकबा माँ
0: लगभग लगभग 1.25 एकड़ में।
1: 1.25 एकड़ में पूरा मशरूम पैरा मशरूम के खेती?
0: पूरा पैरा मशरूम।
1: तो एक बार तो बहुत कन आप सामग्री की जरूरत पड़ी, का सामग्री पड़ते
0: अभी
1: बताओ ना।
0: जैसे क्या थे सबसे महत्वपूर्ण चीज तो अपन के पैरा है रहे, ओकर लेबर है, फॉर्मेलिन चाहिए, बोवेस्टिन चाहिए, स्पॉन चाहिए।
1: और शेड बनाए पर का सामग्री की जरूरत पड़ती?
0: शेड हमन जैसे हमन केवल लगाए हैं बांस बल्ले के उपयोग करके ग्रीन नेट से हमन उत्पादन लेते हैं। कम खर्चा बहुत ही कम खर्च में क्या थे अपन के शेड तैयार हो जाए। ओकर बाद फिर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, जो नॉर्मल जो शेड बनाते हैं जैसे कि शीट वगैरह डाल के ओकर से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन है।
1: तो शेड बनाए बा का करना पड़ते आप बताओ विस्तार ले।
0: शेड बनाए बांस के स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ऊपर में ग्रीन नेट डालना है।
1: अच्छा,
0: बस
1: तैयार हो गए?
0: हाँ तैयार हो गए।
1: शेड बना था उपचारित करे थोड़े पड़ते?
0: उपचारित करते हैं बिल्कुल, स्टार्टिंग में उपचारित करते हैं। एक बार पहला फ्रूटिंग लेने के बाद जब बेड से बेड ला वापिस फेंकथन हाँ। तो कल फिर उपचारित करते हैं, चूना हाँ। पानी से उपचारित करते हैं, जितना समय रहते चूना का थे वो पीएच लेवल ला बढ़ाते हो हाँ। है ना, ओकर से फिर से सैनिटाइज हो जाते हो, सैनिटाइज होने के बाद फिर वो जगह फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा, मतलब जिन कमरा में आप ग्रीन नेट डाल के बनाए हैं वो कमरा ला उपचारित करना जरूरी?
0: उपचारित करना बहुत जरूरी है।
1: गाँव में देखे तो खपरा वाला कमरा रहते माटी के घर रहते, गाँव में मशरूम का उत्पादन करे जा सकते?
0: थोड़ा सा खुला हवादार जगह होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर हवा अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रही तो मशरूम के उत्पादन करना
1: तो पैरा मशरूम की खेती करे पर तापमान कैसे मेंटेन करता है?
0: तापमान फॉगर लगा के और ग्रीन नेट लगा के रखे तो बहुत हद तक के टेम्परेचर में कंट्रोल रहते और साथ में जो आप मन के जो हवा जो है वह आसानी से निकल जाते वहाँ से, तब प्रोडक्शन बहुत अच्छा।
1: ये बता दे जिसे कतको जीवन जिसे आप बेट लगा के करा था कतको जीवन थैली में भर के करते फर्क का है?
0: जो ऑयस्टर जो थैली में भर भर के करते थे ऑयस्टर मशरूम में है ना, उगर थोड़ा सा मार्केटिंग थोड़ा सा डाउन रही थे लेकिन फिर भी निकल जाते। ट्राई तो नहीं करे हूँ, कर भी ट्राई नहीं करे हूँ क्या कि जो पैरा हमन जो पैरा जिस अभी लेबर के जरिए हमन अगर पैरा इकट्ठा करा था तो ले दे के मोर बब जो पैरा 400-500 पैरा अगर इकट्ठा करना है कल्पना करके देखा कि क्या थे कतका महीना लगा थे ही है ना। एक दिन में अगर 6 ट्रैक्टर 7 ट्रैक्टर अगर हमन पैरा डोहारा था अगर पैरा फील्ड से है ना तो 3 महीना 3.5 महीना लग जाते पैरा डोहारा तो कर ले पहली आग ही लग जाते खेत मन में है ना। तो वह सिर्फ ओकरे बबल से इकट्ठा हो पाते वे। अगर मोर का अगर मशीन वगैरह में ले ला मैं है जैसे कि आगामी योजना है कि क्या थे बंडल बनाया लो जो मशीन आते पैरा बिलर मशीन ओला अगर लेबो तो फिर ये ऑस्टर ले भी चालू करबो।
1: अच्छा, बहुत शुगर शुगर बात बताया रोहित साहू जी आप मनमुरमुरा विकासखंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा ले आज हमारे कार्यक्रम में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार, राम राम,
0: राम राम।
2: अभी सुने सफल कृषक ले भेंट क्रम में श्री रोहित साहू मशरूम उत्पादक कृषक रहे ग्राम मुलमुला विकास खंड पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा के मन रही नमय उनकर सो बढ़िया गोड बात करिन राजू भैया मन। तो देखो कतेक लाभकारी ये जो मशरूम के उत्पादन करा था मैं किसान भाई मन अगर चाहें तो अपना के बड़े रूप में देखो जैसे करत है वैसे ने कम से कम अपन रोजी रोटी तो कमा सकत हमें बहुत अच्छा यह व्यवसाय के रूप में बनाया जा सका था। वेला अब सुगर असन

रे ना तो तुला दया लागे रे। ये सुघर गीत गावत रहने आसारामपुर थे। अब सूचना बता दे जाए कार्यक्रम संबंधी। गुरुवार और शुक्रवार के संझा जुवार 7:30 ले फोन इन ले आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, जेमा किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मन सो फोन में सवाल पूछ करके समाधान लपात हैं। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 के हमारे स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक शस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे जी मन उपस्थित रही। इनकर मन सो बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हो। विषय हवे धान फसल में जल प्रबंधन और बिहनिया 11 बजे ले 11:30 ले दूसरिया विषय हवे दलहनी तिलहनी फसल में जल प्रबंधन। ये विषय ले संबंधित जोन भी समस्या है, जिज्ञासा है, एकर समाधान पाए खातिर हमार फोन नंबर हवे 2665992 और दूसरिया नंबर हवे 3100026। ये फोन नंबर लगाए ले पहली हमार बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाए ले झनबुला हो। हमार बिलासपुर के एसटीडी कोड हवे 07752। जीरा जरूर लगाओ। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 के संझा जुहार 7:30 ले 8 बजे तक आप सुन सकते हो। ये तो हो इस कार्यक्रम संबंधी सूचना और बेरा हो गए जाए के तो महंगू भैया ला दो विदा। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मल्ला। महंगू भैया के राम राम, जय जोहार।

कार्यक्रम ग्राम सभा भी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में लीजिए, पहला गाना है अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

Tchau.

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी हमने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में कार्यक्रम सुगम संगीत का पहला गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल और लखा की आवाजों में। अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

श्रोताओं, आज हम एक ऐसे कलाकार की बातें करेंगे जिसने भारतीय संगीत और मनोरंजन को एक नया आयाम दिया। एक ऐसी शख्सियत जो जब गाती है तो लगता है कि महफिल में एक साथ कई सितारे उतर आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक और बेमिसाल मिमिक्री आर्टिस्ट, साथ ही मंच के बेताज बादशाह सुदेश भोसले की।

सुदेश जी का जन्म 1 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। इन्हें सुरों की समाजन की माताजी श्रीमती सुमन भोसले से विरासत में मिली, जो कि एक बेहतरीन शास्त्रीय गायिका थी। घर में हारमोनियम और तानपुरे के बीच सुदेश जी बड़े हुए, लेकिन सुरों के साथ साथ उनके अंदर एक और बेहतरीन कला थी, दूसरों की आवाज हूबहू पकड़ने की। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वे दोस्तों और शिक्षकों की नकार उतारा करते थे, जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी।

श्रोताओं, सुदेश जी ने अपने करियर की शुरुआत ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो से की थी। उस दौर में वो संजीव कुमार साहब, अशोक कुमार साहब और अनिल कपूर साहब की आवाज़ निकाला करते थे जो दर्शकों को लोटपोट कर देती थी। लेकिन नियति में कुछ और ही मंजूर था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन ने इनके इस हुनर को पहचाना। उन्हें लगा कि जो व्यक्ति इतनी बारीकी से आवाज बदल सकता है, वो पार्श्व गायन में कमाल कर सकता है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही।

श्रोताओं, बातें करते हैं सुदेश भोसले साहब के जीवन के एक ऐसे पड़ाव की जिसके बिना इनकी कहानी अधूरी रह जाती। साल रहा 1991, फिल्म थी हम, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसे अमित जी के अंदाज में गाया जाना था। सुदेश जी ने जब माइक संभाला तो इतिहास रच दिया। अमिताभ बच्चन साहब भी इनके गाए गाने के बारे में कहते हैं कि इनकी आवाज़ कभी कभी उन्हें उनकी आवाज़ सी लगती है। उन्हें भ्रम हो जाता है कि गाना सुदेश जी ने गाया है या अमित जी ने।

इन गानों को सुनकर आज भी पैर थिरकने लगते हैं, लेकिन सुदेश जी की प्रतिभा सिर्फ हिंदी सिनेमा और अमिताभ बच्चन साहब तक ही सीमित नहीं रही, वे एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। कई फिल्मों में जहां बच्चन साहब अपनी आवाज नहीं दे पाए, वहां सुदेश जी ने हूबहू डबिंग की। इसके अलावा उन्होंने एक मराठी, बंगाली, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी विनम्रता और कला के प्रति उनका समर्पण आज की पीढ़ी के सिंगर्स के लिए मिसाल है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और उनके एक जोशीले और सदाबहार गीत के साथ।

श्रोताओं, आज हमने आवाज के जादूगर सुदेश भोसले जी के सुरों के समुंदर में गोता लगाया। सुदेश जी आज भी स्टेज पे उसी ऊर्जा के साथ गाते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। आकाशवाणी परिवार और करोड़ों श्रोताओं की ओर से हम सुदेश भोसले जी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ दीजिए इजाजत अपने साथी अंशुल गुलकरी को कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

0: कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम

0: आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी

0: हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसुलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा।

0: का T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज

के मालिक तलत महमूद ने गाया है। 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, आग की त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेटकर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं। यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है, और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है, सिकता रहता है, धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना देती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली

0: विद्यालय में।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा

0: समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the cabinet has approved the construction of an 8-point